0: संसद का मानसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठक होंगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सभी दलों से अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग दें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसीलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कल इस विधेयक के मसौदे को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से राज्य में सभी को समान दर्जा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जनसंपर्क क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन 3 देशों की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की यात्रा को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 58वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिष्ठित वैश्विक प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। श्री मोदी ने लिथुआनिया में 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण सहित सभी 4 पदक जीतने पर भारतीय टीम के सभी सदस्यों को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि अनगिनत युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने और उसमें उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। स्पेन ने अतिरिक्त में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को जीत दिलाई। 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया था। ये स्पेन का दूसरा पुरुष फीफा विश्व कप का खिताब है। इससे पहले उसने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। और पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माइया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दी। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने 9वीं रात भी ईरान पर हमले किए। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव गहराया और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीता। खिताब का बचाव करने उत्तरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है।

0: ये 13 अगस्त तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 दिन के अधिवेशन में सदन की 19 बैठकें होंगी।
1: संसद के मानसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा किया जाएगा। आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा निर्धारित है, जबकि राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक, आयकर संशोधन विधेयक और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले सरकार ने कल संसद भवन में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेता इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के पश्चात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी, क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सदस्यों ने जनहित और राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा का सुझाव दिया। श्री बिरला ने सभी दलों से यह अपील की कि वे कार्यवाही को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने में पूरा सहयोग करें। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आज से शुरू हो रहे संसद अधिवेशन के मद्देनजर नई दिल्ली जिले में किसी भी विरोध मार्च या जुलूस के लिए किसी ने कोई अनुमति नहीं मांगी है और न ही दी गई है। पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है, इसलिए जंतर मंतर को छोड़कर क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अधिवेशन में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पेश किया जाएगा।
3: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल भोपाल जिले के जगदीशपुर में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में यूसीसी विधेयक 2026 के प्रारूप को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग में कहा,
4: विवाह एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो, तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा।
3: यूसीसी विधेयक के मुताबिक लिव इन में रहने वालों को एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही गांव स्तर तक शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से भी

0: मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी। मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये मोल्डोवा की पहली यात्रा है। श्रीमती मुर्मू इन तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति कल नॉर्थ मैसिडोनिया पहुंचेंगी। अमरीका ने लगातार नवी रात भी ईरान पर हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के लिए जारी रहेंगे जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले के लिए किया जाता है।
1: अमरीकी हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव और गहरा गया है। इससे पहले लगातार आठवीं रात हमलों के दौरान अमरीकी सेना ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था, जिनमें तटीय निगरानी और एयर डिफेंस सुविधाएं, समुद्री क्षमताओं और मिसाइल व ड्रोन स्टोरेज स्थल शामिल थे। अमरीकी सेना ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के उन ठिकानों को भी निशाना बनाया जहां से 17 जुलाई को जॉर्डन में अमरीकी सैनिकों पर हमले किए गए थे। पश्चिमी एशिया में 50,000 से अधिक अमरीकी सैनिक तैनात हैं। पिछले हफ्ते अमरीका ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों में सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे पर कई हमले किए हैं। अमरीका का कहना है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस क्षमता को कमजोर करना था जिससे वे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जलपोतों के लिए खतरा पैदा करता है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिले में कल बाढ़ और चट्टाने खिसकने से 11 लोगों की मौत हो गई। 8 लोग लापता हैं। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में चेतावनी जारी की गई है।
2: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उत्तराखंड में रविवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलर्ट के मद्देनजर आज ज्यादातर जिलों में सभी सरकारी और निजी विद्यालय तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। भारतीय मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी न्यूज, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य भर में जनजीवन अस्त व्यस्त है।
4: मुजफ्फरनगर जिले में भारी बारिश के कारण एक पुरानी इमारत गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई, 5 अन्य लोग घायल हो गए। भारी बारिश ने राज्य की राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में आम जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मौजूदा मौसम की स्थिति अगले 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों में तराई के इलाके और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। स्पेन के फेरान टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल करके अपनी टीम को 1-0 से जीत दिला दी।
5: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इससे पहले स्पेन ने 2010 में खिताब जीता था। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। मेसी ने अपनी टीम को 2022 फीफा वर्ल्ड कप और 2021 तथा 2024 में कोपा अमेरिका का खिताब जिताया था। टोरेस फीफा विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले पांचवे ऐसे खिलाड़ी बने जो मैच के अंतिम समय में किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर टीम में खेले। 48

0: इस टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी। इससे पहले भारतीय टीम ने साउथहैम्पटन के रोज बाउल में पहला मैच जीता था। दूसरा मैच कार्डिफ में मेजबान टीम ने जीता।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र और तेज बारिश के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रभावित जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए जारी बचाव और राहत अभियान की खबरें दिखाई देती हैं। जनसत्ता ने जम्मू कश्मीर के साथ उत्तराखंड और नागालैंड में भारी बारिश से मची तबाही का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही आज से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक को शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, सर्वदलीय बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और एथेनॉल जैसे मुद्दों पर चर्चा। जापान ओपन जीतने वाली पीवी सिंधु की तस्वीर भी कई अखबारों ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक ट्रिब्यून ने खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने जापान ओपन जीतकर रचा इतिहास। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में खत्म किया खिताबी सूखा। लोकसत्ता ने भारत के पहले शब्द संग्रहालय का कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय परिसर में उद्घाटन करते केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का चित्र प्रमुखता से छापा है। पत्र ने दिल्ली हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को भी खबर बनाया है, सोनम वांगचुक को इलाज के लिए उठाना गलत नहीं। दैनिक भास्कर का शीर्ष समाचार है, वांगचुक को सरकारी अस्पताल ले जाना मनमानी नहीं हाईकोर्ट। हिंदुस्तान के ने निजी क्षेत्र के रॉकेट विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को अपने संपादकीय लेख का विषय बनाया है। शीर्षक दिया है, वैज्ञानिकों को बधाई।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। सरकार ने सदन के सुचारू कामकाज के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिसिनाउ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संडू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मृत्यु, 8 लोग लापता। अमेरिका ने नवी रात भी ईरान पर हमले किए और स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। खिताब का बचाव करने उतरी अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Monsoon session of parliament begins today. Government seeks cooperation of all political parties for smooth functioning of parliament. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with the Moldovan counterpart Maya Sandhu in Chisinau today. Madhya Pradesh cabinet approves uniform civil code bill. Tribal communities to be kept outside its purview. Flash floods and landslides claim 11 lives in Rajouri and Poonch districts of Jammu and Kashmir, 8 people still missing. US strikes Iran for 9th night as Strait of Hormuz tensions deepen. And Spain beat defending champions Argentina 1-0 in extra time to win FIFA World Cup 2026. And now the news in detail. The monsoon session of Parliament will begin today. It will continue till 13th of August. The 25-day session will have 19 sittings, a report.
4: During the session, several important bills are expected to be taken up for discussion and passage. Today, the Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, and the Rajya Sabha is scheduled to discuss the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Apart from these bills, Registration of Births and Deaths Amendment Bill, Income Tax

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित। आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं 107.1 FM रेनबो पर। आपने आज मस्त मुंबई में मेरे साथ शिरकत करी है, जिसमें आज सोमवार के दिन नया हफ्ता जैसे शुरू होता है, हम कुछ बातें जान लेते हैं करंट अफेयर्स, और साथ ही 10 से 11 के बीच नमस्ते भारत में है प्री जहांगीरी सदा। इस सेगमेंट में कुछ बातें और होती हैं। आज हम मिलेंगे हमारे

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों 8:46 हो चुके हैं और आज हमारे संग जुड़े हैं हमारे कई सारे श्रोतागण जो हमें मैसेज करते हैं 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे और कहते हैं भैया हमारा ये गाना प्ले कर दो। मगर आज मैं कहना चाहूँगा आप सभी की फरमाइशों का दौर तो ये है नहीं, मगर फिर भी आपके मन में बजने वाले गाने आज अमित आप सभी के लिए लेकर आया है। जैसे सुबह मैं उठा और स्टूडियो की तरफ निकला, बस खिड़की से बाहर झांक के देखा, अरे यार इतनी जबरदस्त जोरों की बारिश और यही बरसात हमें

वंचित कर देती है। देखो हफ्ते के पहले दिन अगर इतनी जोरों की बरसात आ जाए तो कुछ लोगों के मन में हो जाए, अरे यार आज शायद ट्रेन बंद हो सकती है, रास्ते भर सकते हैं पानी से, गाड़ियां बंद हो सकती है और ऑफिस को छुट्टी मिल सकती है। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बट आज की लुभावनी बरसात जो है ना, थोड़े से रोमांचित करने वाली है। तो आइए हमारे संग जुड़ने वाले सावन जी की इच्छा पूरी कर देते हैं। कंचन जी आइए सुनते हैं ये अनोखा अंदाज बरसात गीत के संग। आज के दिन में हर किसी को रोमांचित करने के लिए मैं हूं तैयार, बस बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग एफएम रेनबो पर।

कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से ये गाना आप सभी के लिए हमने प्रेजेंट किया है। वैसे देखने जाए तो मस्त मुंबई का ये सोमवार का सुबह का शो जो होता है 8:40 से 10 के भीतर, वो आपको बतला देता है कि किस तरह कौन से दिन क्या क्या खास बातें उस दिन की अहमियत बनाए रखती हैं। अगर आज अतीत के बन्ने खोलने जाए तो आपको पता चले कि आज के दिन में बहुत सारी बातें हुई होंगी, है ना, और वो मैं आप सभी से जरूर बांटूंगा। अगर बात करें आज के मस्ताने सेगमेंट की तो मस्त मुंबई में आज का दिन बड़ा ऊर्जा से भरा हुआ है। इस दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा बुरा घटित होता है। कुछ घटनाएं वक्त के साथ भुला दी जाती हैं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं तो इतिहास में अपना नाम दर्ज कराती हैं। कोई जन्म लेता है तो कोई हमें छोड़ चला जाता है, मगर फिर भी हर किसी की यादें जीवन में बहुत मायने रखती हैं। तो आइए आज हर किसी के दिलों की बातों को थोड़ा सा स्पर्श करने का प्रयास करेंगे और फिर आपको पता चलेगा कि यह सफर कैसे तय हुआ। अरे अंदाजा ही नहीं आया। आज हम जाते हैं, सोमवार का दिन है तो भगवान शिव जी को अगर याद करें तो राज कपूर साहब की इस फिल्म का ये अंदाज हम सभी को डिवाइन मोड में ले जाता है। और हम चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज के संग हम भी सभी अपने मन के शिव को

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

हालांकि अंध संस्थान से फोन करते हैं, कहते हैं कि बारिश तो गिर रही है मगर क्या करें, ये नज़ारे हम देख नहीं सकते, मगर इसके बावजूद हम एफएम रेनबो सुनकर बरसात क्या हो सकती है, कैसे दिख सकती हैं, इसका अंदाज़ा ले रहे हैं। जगन्नाथ जी, वाह, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप अनंत कृष्णन जी हमारे संग जुड़े हैं, रियासत हुसैन जी हैं, कंचन जी हैं, और प्रमोद चिंचोलकर, विजेंद्र गतोल, दीपा पालकर, आर्यन सुमनशी, फिरोज श्रीकानपुरिया, प्रणव शिंदे, रजनीकांत पाटिल, विश्वास चांदोरकर, प्रमोद कारखानी, पद्माकर पाटिल, शुभदा जी, पंकज मोहट जी, विक्रम अठावली जी, श्रेय राउत, किशोर नाइक, शोभा सप्रे, आप सभी का और दीपाली शिरोडकर जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे देखने जाए तो देखिए, हर दिन में कुछ ना कुछ खास बातें कभी ना कभी लिखी हुई पाई जाती है, मगर 16 जुलाई की अगर बात करें तो अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में स्थित जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ा। नासा का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ये 4 दिन का सफर पूरा करके 20 जुलाई 1969 को, यानी आज के दिन, इंसान को धरती के प्राकृतिक उपग्रह चांद पर लेकर पहुंचा। ये यान 21 घंटे और 31 मिनट तक चंद्रमा के सतह पर था। 20 जुलाई की यह खास घटना आज भी इतिहास में दर्ज है। दरअसल यह वही तारीख थी जब नील आर्मस्ट्रांग के रूप में किसी इंसान ने पहली बार चंद्रमा के सतह पर कदम रखा था। इतिहास में दर्ज हुई यह बात। कैसे दिखता होगा चांद, क्या वो नजारे होंगे, क्या हम तस्वीरों में ही देखेंगे? नहीं, चलो, मैं आरजे अमित एफएम रेनबो के मस्त मुंबई शो में आप सभी को लिए चलता हूं उसी चांद पर। क्या आप हमारे संग आने के लिए तैयार हैं? बताओ हमें 8657661071 पर।

एक ऐसा पल होता है जब बचपन में हम खेलने कूदने में बड़े ही व्यस्त रहते हैं, मगर खेलते कूदते अगर गुनगुनाने लगे और कोई हमारी आवाज सुन ले, वो मुतासिर होकर हमारे घर आ जाए और अपने पिताजी से कहे कि बताओ ये जो गा रहा है वो कौन है। पिताजी कहते हैं हमारी छोटी बेटी गा रही है। ओके ठीक है, उन्हें बाहर ले आओ, उनसे थोड़ा सा गवाओ, हम सुनना चाहते हैं बेटी गाती है। वो सुनते हैं और सुनने के बाद वो तय कर लेते हैं 12 साल की इसी लड़की को अब मैं तैयार करूंगा, मैं सिखाऊंगा और इससे प्लेबैक भी करवाऊंगा कि हनुमान प्रसाद इस संगीतकार ने सुनी हुई वो आवाज हमें जब हिंदी फिल्मों में सुनाई पड़ती हैं तो कुछ ऐसे आवाज के संग वो हम सभी के दिलों पर कहर मचा जाती है। हर कोई आज भी उनकी आवाज का दीवाना है। कौन है वो गायिका, बताइए 8657666 1071 इस व्हाट्सएप नंबर पे।

0: आकाशवाणीच्या कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी अंतर्गत कार्यक्रम निर्माते आणि निर्मिती संस्थांकडून सर्जनशील आणि दर्जेदार कार्यक्रमांसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. अधिक माहितीसाठी https://prasarbharati.gov.in/NIPP या वेबसाईटला भेट द्यावी. शेवटची तारीख आहे 31 जुलै 2026.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू.
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध. शर्तें लागू.
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ.

आज हमने पूछा था कि यह आवाज है किसकी, जो गायिका बहुत कम उम्र में के हनुमान प्रसाद जी के संगीत निर्देशन में प्लेबैक सिंगर बन जाती हैं। दीपा पालकर जी ने सही जवाब दिया, दीपाली शिरोडकर जी ने और प्रमोद चिंचोलकर जी ने, पंकज मोहोड़ जी ने, प्रणव शिंदे जी ने, विनोद मकवाना जी दहीसर से, और इन सभी ने जो सही जवाब दिया है वो जवाब क्या है? गीता दत्त। हाँ जी, गीता दत्त जी आज के दिन हमें छोड़ चली गई। 1972 में महज 42 साल की उम्र में इनकी ये दुखद यात्रा हर किसी को चौंकाने वाली रही, मगर अपने जीवन में जब 3 दशकों तक उन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा वो कुछ इस कदर कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। उन्होंने वैसे ओपिनियर एसडी बर्मन जी, रोशन साहब, गुलाम हैदर और बुलो सी रानी और अन्य कई सारे संगीत निर्देशकों के लिए हिंदी, मराठी, बंगाली और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में गाने गाए, मगर हिंदी फिल्मों में गाए उनके गीतों की बात ही कुछ और है। हर गाना माने हर किसी को ब्लैक एंड व्हाइट दौर में जरूर ले जाता है, मगर बतलाता है कि मस्त मुंबई की शान गीता दत्त के गानों से आज भी जरूर हो सकती है। आइए मिसाल के तौर पर आपको भाई भाई फिल्म के इस गाने की ओर ले चलते हैं जो मदन मोहन साहब के संगीत निर्देशन में गीता दत्त ने गाया था। गीता दत्त जी को एफएम रेनबो की ओर से आरजे अमित और हमारे सारे श्रोताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनकी श्रद्धांजलि पूर्वक याद करते हुए उन्हें स्मरण करते हैं इस गाने के साथ।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
1: सुन सुन सुन सुन।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। आज गीता दत्त जी का जिक्र करने के बाद कई सारे लोगों ने अलग अलग गीतों की मांग रखी, मगर हम चाहते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा अंदाज सुनाकर गीता दत्त जी को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सुनिए गीता दत्त और मोहम्मद रफी ने गाया ये अंदाज एफएम रेनबो पर मस्त मुंबई में, और बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग इसी कार्यक्रम में एफएम रेनबो पर।
3: है ये रंगीन रातों की एक दास्ता है, उधर तुम हंसी हो।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉसमॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

9:31 हो चुका है दोस्तों, और आप सुन रहे आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम मस्त मुंबई आरजे अमित के संग। वैसे देखने जाए तो एक इंसान जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, किसी डायरेक्टर के संग बातें करते रहता है, तो उनकी बीवियां एक दूसरे से बातें करते हुए थोड़ी बोर हो जाती हैं। तो वो कलाकार कहता है, काम करो, अगर आप बोर हो गई हो तो कोई फिल्म बना लो। तो उनकी बीवी और दोस्त की बीवी कहती है, भाई हम फिल्म बनाए तो बना भी ले, मगर फिल्म बनाने के बाद वो रिलीज कैसे करें? बोले क्यों, थिएटर में कर सकती हो, ऐसे तो मुमकिन है ही नहीं ना, क्योंकि एक ही कलाकार की लगभग 7-8 फिल्में कंटिन्यूसली कई सारी थिएटर्स में चल रही हो तो उन्हें सिल्वर जुबली कुमार कहा जाता है। और वो अगर अपनी फिल्में बनाना छोड़ दे तो कभी जाकर हमें मौका मिलेगा? ये तो मुमकिन ही नहीं है कि हम अपनी फिल्म बनाए और थिएटर में चलाए, क्योंकि आपकी फिल्में सिल्वर जुबली जो रहती हैं। ये सुनने के बाद दोनों हंस पड़े। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नायक की जिन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन है वो जिनका आज है जन्मदिन, आइए उन्हें भी याद करते हैं इस गाने के साथ। हमें बताइए उनका नाम 8657661071 पर।

कई लोगों ने सही जवाब दिया है, आप है जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार जी। जी हाँ, ये सही जवाब देने वाले हमारे सारे श्रोता, जिसमें स्नेहा जी हैं वर्ली से, और श्रेय राउत, महेश भाटकर सेंटाक्रूज से, विनोद मकवाना दहिसर से, प्रमोद चिंचलकर अकोला से हैं, दीपा पालकर जी हैं, विजेंद्र गटोल जी ने भी सही जवाब दिया है, और अजय साखरे जी भी जुड़े हैं। मैं चाहूँगा ये जितने सारे हमारे श्रोता हमें सही जवाब देते हैं ना, उनके लिए भी एक गाना जरूर बनता है ना। कौन सा? चलो आपको ये गाना सुनाऊं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: 9:46 हो चुके हैं। मैं हमारे सभी श्रोताओं से विनती करना चाहूंगा, ठीक है, देखिए ये मस्त मुंबई का सफर तो हम तय कर ही रहे हैं, मगर ठीक 10 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और समाचारों के इस पार हम आप सभी को ले जाएंगे एक ऐसे इंटरव्यू की ओर जिसमें हमारे संग जुड़ने जा रही हैं मसर्रत खान जी, जो कि हमें डिसलेक्सिया इस सब्जेक्ट पर कुछ बातें शेयर करते हुए हमारे से जुड़ने वाली हैं और कुछ गाने भी हम आपको सुनाएंगे। तो हम चाहेंगे अगर आपके कुछ इसी सब्जेक्ट से जुड़े, अवेयरनेस से जुड़े सवालात हो तो आप 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमारे संग बने रहना। 10 से 11 के भीतर ये इंटरव्यू चलने वाला है। आप जिस तरह हमारे संग जुड़े रहते हैं मज़ा आता है। एक तरफ कल भी मजा आया, स्पेन जीता, अर्जेंटीना की हार हो गई, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल का बुखार मानो पूरे देश पर चढ़ा हुआ था, देर रात होटल्स खुले हुए थे और रेस्टोरेंट्स भी। तो हम चाहते हैं कि एक तरफ मुंबई में भी ये फुटबॉल का फीवर जो फैला हुआ है वो कहीं ना कहीं नाराज भी कर गया, क्योंकि हम इंग्लैंड से हार भी गए ना क्रिकेट मैच में लॉर्ड्स के मैदान पर। एक तरफ रोहित शर्मा ने बतला दिया कि शेर अभी भी जवान है, 138 रन की क्या पारी खेली है यार, हम तो चाहेंगे ऐसे खिलाड़ी अगर हमारे देश में पैदा हुए हैं तो उनका जरूर हमें गर्व होना चाहिए, क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग करी। और ऑफ कोर्स बाकी टीम भी बहुत ही बढ़िया खेली, मगर जिस तरह उन्होंने हमारी हालत हस्ता कर दी थी 388 रन मार के, वो कहीं ना कहीं दुख होता है। मगर लॉर्ड्स के मैदान पर रोहित शर्मा बने वनडे में सेंचुरी बनाने वाले सबसे पहले भारतीय खिलाड़ी, तो इसी

खाने हम उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और एक जबरदस्त गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में गाया, दो रास्ते से सुनिए आरजे अमित के संग, बने रहना एफएम रेनबो पर।

9:54 हो चुके हैं दोस्तों। आखिरी गाना इस सेशन का यानी मस्त मुंबई का मैं प्ले करने जा रहा हूं, और उस गाने के पार 10 बजे आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार मसर्रत खान जैसे मुलाकात करने के लिए हम तैयार हैं। अगर आप भी डिसलेक्सिया के बारे में अवेयर होना चाहते हैं तो ज़रूर बने रहना, और आपके सवाल 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, और हम चाहेंगे 10 बजे के समाचार भी आप ज़रूर सुने। नमस्ते भारत में आर जमत के संग जुड़े रहना FM रेनबो पर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में 40,000 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं ने भागीदारी की। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चाओं में भागीदारी करने और संसद की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह सभी राजनीतिक दलों से किया। समाचार में आगे, स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में कल रात हुए फाइनल में स्पेन के सब्स्टिट्यूट फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को अर्जेंटीना पर 1-0 से जीत दिलाई। 90 मिनट तक चले कड़े और रोमांचक मुकाबले के बाद भी कोई गोल नहीं हो पाया था, लेकिन आखिरकार टोरेस ने 106वें मिनट में गोल करके गतिरोध जोड़ा। इस जीत के साथ स्पेन ने पुरुषों का अपना दूसरा फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता। इससे पहले स्पेन ने 2010 में यह ट्रॉफी जीती थी। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुषों और महिलाओं के सॉकर में वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया। समाचार में आगे, ईरान में अस्थिरता और संघर्ष में हुई हाल ही की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि ईरान में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध उड़ान विकल्पों के जरिए अंशकालिक तौर पर ईरान से बाहर निकलने का विचार करना चाहिए। और समाचारों के अंत में, मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दिल्ली,

हरियाणा, चंडीगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, माही, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम नमस्ते भारत।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 10:04 हो चुके हैं। मैं हूं आपका मनमित आरजे अमित, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एफएम रेनबो पर। और शो शुरू हो चुका है नमस्ते भारत। है प्रीत जहां की रीत सदाई सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक ऐसे मेहमान से जो कि जानी मानी हस्ती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर कोई अपने लिए जीता है, मगर औरों के लिए जीना और अपना योगदान देना ये कोई आसान बात नहीं होती ना। और इसलिए मिस्टर रतखान ये नाम जब हमारे सामने आता है तो महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन एमडीए की डायरेक्टर के रूप में वे काम कर रही हैं ये बात ध्यान में आ जाती है। उनके पास सीखने की अक्षमताओं और बच्चों की शिक्षा में 3 दशकों से भी अधिक शानदार अनुभव है। वे एक प्रमाणित थेरेपिस्ट हैं, लेखिका है, और जो भारत में डिसलेक्सिया जागरूकता और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात आती है तब उसमें ये एक नाम अग्रसर होते हुए हमें दिखाई देता है। मसरत खान जी, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार।
1: एफएम रेनबो के आज के कार्यक्रम में आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल हैं। और हम चाहते हैं कि आज हमारे श्रोता जो कि डिसलेक्सिया के बारे में अक्सर बात नहीं करते, उनको आप जागरूक करें और हमें बतलाएं कि आखिर डिसलेक्सिया शब्द सुनने के बाद जो ठीक से समझ नहीं पाते उन्हें आम इंसान की भाषा में समझाएं कि डिसलेक्सिया आखिर है क्या, माता पिता को इसके शुरुआती लक्षण बच्चे में किस उम्र में दिखने लगते हैं।
2: जी, डिसलेक्सिया एक ऐसी समस्या है जो भाषा पे आधारित सीखने की अक्षमता है, भाषा से रिलेटेड है। और इसके जो लक्षण है वो है क्या, पढ़ने में, सीखने में, लिखने में, शब्दों के आकलन में उनको समस्या होती है। और ये बुद्धिमत्ता से या इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, ये पैदाइशी है। जिनको भी डिसलेक्सिया होता है या पढ़ने में अक्षमता है, रीडिंग में, वो सब कुछ समझते हैं ओरली। जैसे आप जब उनसे बात करोगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या उनको किसी तरह की समस्या है, क्योंकि वो सब समझते हैं, आपसे अच्छी तरह बात करते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब दे देते हैं। लेकिन जब वही चीज आप उनको किताब देके कहते हैं पढ़ो, या उनको पेपर पेंसिल देके कहते हैं लिखो, तब आप देखते हो क्या वो उन चीजों से दूर भागते हैं। उन्हें पढ़ने में ऐसे हमें लगता है कि उन्हें जैसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उन्हें लिखना नहीं है। लेकिन वो एक्चुअली वो लक्षण है क्या, जो बच्चा अगर हमें हर चीजों का जवाब दे सकता है, समझ सकता है या समझ सकती है, तो वो क्यों पढ़ने से दूर भाग रहा है या भाग रही है।
1: सही कहा आपने, ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चे किस तरह बिहेव कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर।
2: जी,
1: आज शायद आप जब कह रही थी तो हमारे श्रोता कई बार अपने निजी जीवन में कुछ बच्चों से रिलेट कर रहे होंगे जो उनकी नज़र में ऐसे उन्होंने पाए होंगे। हम चाहते हैं हमारे श्रोताओं से पूछना कि क्या आपने कभी कोई ऐसी केस देखी है जैसे कि मसरत खान जी हमें बता रही हैं। हम चाहेंगे अगर ऐसी कोई बात है तो ज़रूर आप हमसे साझा करें। 8657661071 पर आपके सवालों के साथ

हम तैयार रहेंगे मसर्रत खान जी से कुछ बातें पूछने के लिए। बस एक गाना सुनाएंगे और इस गाने के बाद फिर एक बार मसर्रत जी हम आपसे जुड़ेंगे।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: नमस्कार, सुबह के 10:16 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर नमस्ते भारत ये कार्यक्रम, और मैं हूं आपका मनमीत आरजे अमित, जो आज जुड़ा हुआ है आप सभी के लिए डिसलेक्सिया इस बारे में बात करने के लिए मसर्रत खान जी से। मसर्रत जी, आज आपके संग जुड़े हुए हमें बड़े खुशी हो रही हैं, क्योंकि अक्सर इन सब्जेक्ट्स पर बातें होती नहीं हैं, है ना। अगर हमारा बच्चा कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है या फिर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कुछ पढ़ नहीं पा रहा है या फिर कुछ लिख नहीं पा रहा है, कुछ समझ पा रहा है, ये सब कुछ ऐसे लगता है कि बाकी बच्चों से हमारा बच्चा थोड़ा सा पीछे है। कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरा बच्चा शायद डिसलेक्सिया का शिकार हो सकता है, है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये भ्रम और सच्चाई के बीच का बीच की जो राह है वो कैसे चुने। मतलब अक्सर लोग इसे बच्चे का आलसीपन समझते हैं या पढ़ाई में जी चुराना समझ लेते हैं। एक पेरेंट के तौर पर हम कैसे फर्क समझे कि बच्चा जानबूझकर नहीं पढ़ रहा है या वो सच में डिसलेक्सिया जैसी किसी चुनौती का सामना कर रहा है।
1: जी, ये बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है क्या जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या पढ़ना नहीं चाहते हैं वो आलसी है। या आप तो आलसी बोल रहे, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे बोलते हैं क्या ये है ना, इसको दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, या इसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है क्या अगर बच्चा आलसी है तो वो क्यों आलसी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, हर चीज के लिए वजह होती है, तो हमें ये पूछना है क्या वो आलसी क्यों है, कोई बच्चा आलसी क्यों होता है। अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये पूछना है क्या ये बच्चे में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे।

0: ये किसी भी चीज में. और अगर उनकी जो ना पढ़ने लिखने से अगर उन्हें डांट मिल रही है, अगर उन्हें पनिशमेंट मिल रहा है, तो हमें ये सोचना है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो पनिशमेंट से खुश हो रहा है, जो हमेशा पढ़ाई से दूर भागेगा ताकि उसको उसको सजा मिले. तो ये हमें पूछना है ये ऐसे क्यों कर रहा है हमारा बच्चा, और फर्क कैसे समझेगा. जैसे अगर आप उसको कोई भी चीज जो रीडिंग से पढ़ने से रिलेटेड है या लिखने से रिलेटेड है, वही वही कामों के वक्त ये बच्चा जो है कहेगा मुझे करना नहीं है, या वो जो है कहेगा किताब मिल नहीं रही है, या वो कहेगा क्या मुझे सर दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे बहुत नींद आ रही है. और ये सिर्फ रीडिंग और राइटिंग से ही रिलेटेड है, लेकिन और अदर मीडियम ऑफ जो लर्निंग होता है ना, जैसे ओरल वर्क होता है, जैसे पोएम्स है, गाने हैं, ओके, जो भी चीज जो ओरल वर्क होती है जिसमें उनको रीडिंग नहीं करना है, उन्हें राइटिंग नहीं करना है, जो उनको सुनकर सीखना है, उसमें वो दिलचस्पी देते हैं, वो अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उन्हें अपने इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी है, वो दूसरों से सुनकर बातें सीख लेते हैं. लेकिन वही चीज जब उन्हें रीड करना पढ़ना है या लिखना है, तभी आप वो देखेंगे क्या वो उससे वो चीजों से दूर भाग रहे हैं या उनमें उनको उस चीज से नफरत है. तो ये एक लक्षण है क्या, अगर बच्चा किसी भी चीज किताब से दूर भाग रहा हो, चाहे उसे वो किताब से पढ़ना हो या वो किताब में लिखना हो, तो वो एक वार्निंग साइन हो जाती है क्या ऐसा क्यों, अगर ये बच्चे को आ रहा है तो वो पढ़ना क्यों नहीं चाहता है. तो ये एक मेन डिफरेंस है, और हमें ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है.
1: अब
0: हमारा बच्चा हर चीज में एक्टिव है, तो फिर वो लेजी कैसे हो सकता है, वो आलसी कैसे हो सकता है ना, हमें ये क्वेश्चन करना है. अगर हम इजीली अगर हम कह देते हैं क्या ये बच्चा आलसी है या इसे चीजों में दिलचस्पी नहीं है, तो हम हमारे तरफ से हमारी जो जिम्मेदारी है बच्चे के तरफ बच्चे के लिए, उसे उसे हम दूर भाग रहे हैं. क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कुछ इस चीज की कमी है या कोई दिक्कत है जिसके वजह से वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है क्या हम उसकी जांच करें और उसका जो उसकी जो उसका जो हल है वो निकाले.
1: बराबर बराबर.
0: लेकिन जब अगर हम उनको ये आलसी कह देते हैं, तो हमारे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चले जाती है. और ये मैं सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं कहती हूँ, ये टीचर्स को भी अप्लाई करता है, क्योंकि ये लक्षण जो है टीचर्स भी अपने क्लासरूम में देखते हैं.
1: बराबर.
0: तो टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है ये सवाल पूछने के लिए, क्या ये बच्चा अगर मैं कोई चीज क्लास में पढ़ाती हूँ ओरली, तो बच्चा ध्यान देके सुनता है और जवाब भी देता है, तो यही चीजें वो एग्जाम में परीक्षा में क्यों नहीं दे पाता है जब उसे लिखना है.
1: बराबर. ओके चलेगा. आज ये जो बात आप बता रही हैं, शायद हर किसी को आप इत्तला कर रही हो कि अब हमें सजग होना काफ़ी ज़रूरी है, थोड़ा सा शर्म छोड़कर आगे आना है, और अपने बच्चों के इसी बात के लिए आगे बढ़कर वो सवालात करना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो बच्चे यहाँ से वहाँ जाते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा आखिर बच्चे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, है ना. उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ के संग सजा एक गाना फिल्म कोई मिल गया से हम आप सभी को सुना रहे हैं. हम चाहेंगे मसर्रत खान जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो 8657661071 इस नंबर पर आपके मैसेजेस का मैं इंतजार करता रहूंगा. सुनते रहना FM रेनबो विद आपका मनमीत RJ अमित.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
2: कभी खट्टी मीठी तकरार,
3: जब तुम चाहो पास आते हो।
2: कभी बेइंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत,
3: बगाने बावड़े आगन, बगाने बावड़े आगन।
2: तो कभी मासूमियत बेशुमार, ये है अनोखे रंगों वाला FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक।
3: मन वाला गे, ओ मन वाला।
4: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
5: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
4: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
5: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
4: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आज मुसर्रत जी हमारे संग बात कर रही हैं डिसलेक्सिया इस सब्जेक्ट पर। और मुसर्रत जी, आज हमें खुशी इस बात की हो रही है कि शुभलक्ष्मी मस्तकार अनिर चिरलेकर उरन से, पंढरपुर से भी हमारे साथी हैं, महेश भाटकर सेंटाक्रूज से हैं, विजेंद्र घटल अकोला से हैं, प्रणव शिंदे जी फिरोज सिगानपुरिया, दीपा पालकर, राकेश माथुर जी, रजनीकांत पाटिल, विनोद मकवाना दहिसर से, दीपाली शिरोडकर, श्रीधर मोरजकर, हितेंद्र दास और साथ ही कांदिवली से मनीष हमें मैसेज करते हैं, मिलेश गजानंद राउत जी हैं, स्नेहा जी है वर्ली से, प्रमोद चिंचोलकर, अजय साखरे इंदौर से हमें मैसेज करते हैं, पंकज मोहड़ जी भी जुड़े हुए हैं, दादर से बाबा है और पंढरपुर से ओंकार काटकर हमें मैसेज करते हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन, रियासत हुसैन सिद्दीकी, आर्यन सोमवंशी जलगांव से, विश्वास चांदोरकर जी हैं, प्रमोद कारखानी जी, पद्माकर पाटिल, शुभदा जी, विक्रम आठवले और अन्य कई सारे श्रोतागण। हर किसी को आपसे ये जानने की चाहत है कि किस तरह आखिर बच्चों को समझाया जाए। अगर बच्चे ऐसे पाए जाते हैं तो बताएं, तो किसे बताएं, सबसे पहले कहाँ लेकर जाएं?
1: तो जब बच्चा ये जो लक्षण है, राइट, जो साइंस है डिसलेक्सिया के, ये जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब समझ में आता है। जब जैसे मैंने कहा, किताब का इंट्रोडक्शन होता है रीडिंग और राइटिंग के लिए, तब तक हमें पता नहीं चलता
0: जी।
1: लेकिन फिर भी ऐसे कई लक्षण हैं जो पेरेंट्स घर में देख सकते हैं स्कूल, बच्चा स्कूल जाने के पहले, जैसे 3 साल से ही आप देख सकते हैं, जैसे बच्चे को जो है पिक्चर्स में इंटरेस्टेड है लेकिन कुछ भी प्रिंट वर्क होगा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते हैं, वो उनका ध्यान भटक जाएगा। या बच्चे जो है कहानी अगर आप किताब लेके कहेंगे क्या चलो हम बैठ के कहानी पढ़ते हैं साथ में, जो हम यूजुअली बच्चा एक्चुअली पढ़ता नहीं है लेकिन पेरेंट्स किताब लेते, तो बच्चे को जो है किताब में इंटरेस्ट नहीं है, वो कहेगा क्या है ना, मुझे बस आप कहानी सुना दो, किताब की क्या जरूरत है, अपने तरीके से वो इंडिकेट करता है। या जो है जो दूसरे बच्चे आसानी से सीख लेते हैं वो उसमें उसे दिक्कत होती है या वो ज्यादा वक्त लेता है। तो जब आप ये सब देखते हो और आपका बच्चा अभी तक स्कूल नहीं जा रहा है या स्कूल शुरू किया है, तो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है आपका चाइल्ड, आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। यू हैव टू गो टू द चाइल्ड स्पेशलिस्ट, क्योंकि कभी कभी हम जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस बच्चों से ज्यादा होती है, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमें बताएंगे क्या क्या हम जो सोच रहे हैं हमारे बच्चे के बारे में वो सही है या नहीं, और

0: वो पीडियाट्रिशियन जो है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो हमें गाइड करेंगे.
1: जी जी
0: बच्चा
1: जी
0: अगर स्कूल जा रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है टीचर है, क्योंकि आप टीचर से जो आपका ऑब्जर्वेशन है, जो आपने देख, आप जो देख रहे हैं आपके बच्चे में जो समस्या है वो आप टीचर से शेयर करें. तो टीचर अगर सेम थिंग जो है वो टीचर क्लास में भी देख रही है तो वो टीचर जो है वो होपफुली, अगर टीचर को इस समस्या के बारे में जानकारी है तो वो गाइड करेगी. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज पीडियाट्रिशियन है छोटे बच्चों में.
1: ओके,
0: अगर पेरेंट्स और दूसरे जो प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अगर बच्चों को डिस्लेक्सिया तो रीडिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो एक हम जो उसको एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं, जो राइटिंग को भी इफेक्ट कर सकता है, जरूरी नहीं है रिटेन वर्क को या जिस मोटर स्किल्स है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं कई बच्चों में. तो वहां पे जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोटर कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो सकता है जिसके वजह से बच्चे बोर्ड से लिख नहीं पाते हैं या उनकी बुक्स इनकम्प्लीट रहती है, उनका वर्क इनकम्प्लीट रहता है, या बहुत मेसी हैंडराइटिंग होती है, बच्चा खुद पढ़ नहीं पाता है उसने क्या लिखा है. ये मैं थोड़े बड़े बच्चों की बात कर रही हूँ, हायर क्लास में जो बच्चे हैं. तो ऐसे जब आप देखते हो क्या बुक्स मेसी है, अनटाइडी है, रिटर्न इनकम्प्लीट है, बहुत सारा क्या कहते हैं क्या कैंसलेशंस है, तो फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है उनका रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. वो मोटर कोऑर्डिनेशन पे वर्क करेंगे. अगर अगर जो है बच्चे जो है ठीक से जो रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं उसका और उनका उनके जो समस्या है वो टीचर समझ पा रही है, तो जो टीचर है शायद पेरेंट्स को कहेंगी क्या आप जाके एक स्पेशल एजुकेटर से मिलिए जिनको इन ये समस्या को कैसे हैंडल करना है वो आपको बताएगी. तो स्पेशल एजुकेटर का भी रोल होता है.
1: बट मुझे हाँ, एक सवाल जहन में आ रहा है जो हमारे कुछ श्रोताओं ने भी पूछा हुआ है. मंगेश जोशी जी रोहा रायगढ़ से जुड़े हैं और सुनील जी हैं, वो हमसे पूछते हैं कि जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई में मानो पीछे छूट जाते, ओके, वो डिसलेक्सिया के शिकार तो बन गए और समझ में आ गया, तो उन पर क्या सही तरीकों से उन्हें सामान्य बच्चों की तरह आगे बढ़ाया जा सकता है?
0: जी, एक हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है और जो आज हमारे जो स्टूडेंट्स जिनको बहुत जिनको 30 साल पहले जब मैंने ये 30 साल से ज्यादा जब मैं ये फील्ड में आई थी तो तब तो कुछ भी नहीं था, जानकारी नहीं थी, लेकिन तब जो बच्चे जब आइडेंटिफाई हुए थे, आज वो बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, फाइव स्टार होटल में शेफ है, आर्किटेक्ट है, स्पोर्ट्स में है.
1: क्या बात है?
0: तो अगर आप सही वक्त पे उनको आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम को और सही जो है उनको सही तरीके से सिखाए, जैसे अगर बच्चा जिस तरीके से हम सिखा रहे हैं उस तरीके से वो सीख नहीं पा रहा है तो हमें ये समझना है कि अब बच्चा जो है वो कैसे सीख सकता है और बच्चे को कैसे सिखाना है वो हमें सीख कर उसे सिखाना है.
1: ये काफी जरूरी
0: है. चाइल्ड द वे द चाइल्ड इज एबल टू लर्न, ओके, तो वो जरूरी है क्योंकि ये बच्चे जो है उनमें सीखने की क्षमता है, लेकिन क्या हम उन्हें उस तरह सिखा रहे हैं जिस तरह वो सीख पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है.
1: जी,
0: तो हमारे जो टीचिंग स्टाइल है उसमें हमें बदलाव लाना है.
1: जी, इस बदलाव के साथ हम और कुछ सवालों की ओर बढ़ेंगे, बस उससे पहले चाहते हैं एक गाना हम हमारे सारे श्रोताओं को सुनाएं. हमारे और श्रोताओं के जितने सारे सवाल होंगे आप जरूर हम तक पहुंचाना 8657661071 पर. आपके मैं मैसेजेस का यानी सवालों का इंतजार कर रहा हूं. सुनते रहना FM रेनबो, आपका मनमीत आर्जामित के साथ.

0: मजर्रत जी, आज हमारे संग जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो मैं कहना चाहूंगा, मगर ये अवेयर करने की जब बात आती है तब अवेयरनेस से जुड़े कई सारे सवाल आपको करते होंगे ना पेरेंट्स तो हमारे एक ऐसे पेरेंट्स हैं प्रणव शिंदे, जो कि आज श्रोता बनकर हमारे संग जुड़े हैं। उनका कहना है कि क्या ये समस्या उम्र के साथ और गंभीर हो सकती है या फिर इसके लक्षण समय के साथ बदलते हैं?
1: जी हाँ, जरूर। अगर आप सही समय पे इसको आइडेंटिफाई नहीं करते हो और सही जो तरीके से सिखाते नहीं हो बच्चों को, तो ये समस्या जरूर गंभीर हो जाती है। बिल्कुल, हम कहते हैं क्या, चार गुना बढ़ते जाती है।
0: अच्छा,
1: विद एवरी पासिंग ईयर
0: इतनी
1: सीवियर हो सकती है। इसलिए हमारा फोकस है क्या, जितने जल्दी हो सके आइडेंटिफाई करो। तो प्री स्कूल में ही हमारा मकसद है क्या, प्री स्कूल के टीचर्स ही में इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्या वो आइडेंटिफाई कर सके, ताकि ये बच्चों को सही तरीके का रेमिडियल जो हम कहते हैं क्या सिखाने का तरीका है वो हम अपनाएं। तो यस, बढ़ सकता है और एज के साथ लक्षण बदल भी सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेज में जो है हम जो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं वो बदलते जाता है।
0: Okay.
1: जो हम 3 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं और जो हम 8 साल के और 15 साल के और 30 साल के और 50 साल के उम्र के जो एडल्ट है, क्योंकि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, ये बच्चों से रिलेटेड नहीं है।
0: जी जी,
1: आप ये पैदाइशी है
0: जी,
1: तो लक्षण जरूर बदलते रहते हैं।
0: ओके जी, शुक्रिया। हम चाहते हैं नमस्ते भारत में एक और सवाल की ओर आप सभी को ले जाए, मगर उससे पहले सुनिए ये गाना। ये गाना आपको एक फिल्म की ओर ले जाएगा, जो फिल्म आपको इशारा करती है डिसलेक्सिया इसी सब्जेक्ट के बारे में। कौन सी है वो फिल्म आप हमें बताएं, और सुनते रहना नमस्ते भारत। नमस्ते भारत में मसर्रत खान के संग हमारी बातें चल रही हैं डिसलेक्सिया।

0: idiot.
1: Cosmos Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित.
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: eKYC,
2: NEFT, RTGS,
1: IMPS,
2: Cosmos रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट Cosmos बैंक में जरूर होना चाहिए.
2: Cosmos Cooperative Bank, Enriching Life.
3: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग.
4: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
3: जो छू लेते हैं आपका मन.
4: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा.
3: हर आरजे का है एक अलग ही रंग.
4: ओ रंग रे
3: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से जो पहुँचती है आपके दिल तक. ओनली ऑन FM रेनबो.
5: FM रेनबो पर मैं आपका मनमीत आरजे अमित आपको सुना रहा हूँ नमस्ते भारत. इस कार्यक्रम में है प्रिय जहाँ की रीत सदा. इस सेगमेंट में हमारी मेहमान मसर्रत खान जिसे डिसलेक्सिया के बारे में कुछ जानकारी. और ये जानकारी साझा करते वक्त ये जो फिल्म और इस फिल्म का जिक्र करते हुए जो गाना हमने सुनाया कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया है. मैम आपने गाना पहचाना क्या?
6: हाँ जी, तारे जमीन पर.
5: सही जवाब.
6: कैसे हम नहीं जानेंगे ये. मेकिंग ऑफ द मूवी में महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है.
5: अच्छा, कैसे मैम?
6: मकसद ही ये था क्या, डिसलेक्सिया की जागरूकता के लिए हमें कुछ करना चाहिए और फिल्म से और कौन सा अच्छा माध्यम हो सकता है. तो तारे जमीन पर मूवी जो है ये इस पे हमारे जो प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र डिसलेक्सिया एसोसिएशन 6 साल वो स्क्रिप्ट पे काम किए हैं. तो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन सब हमने ही दिया है मूवी के लिए.
5: अच्छा, ओके क्या बात है. आप मुझे बताइए कि हमारे पूरे देश में डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है?
6: 3 करोड़.
5: क्या बात कर रही है
6: जी. और हम लाखों 1 लाख के करीब भी पता नहीं हमने आइडेंटिफाई बच्चे किए हैं या नहीं. तो लोगों को ऐसे लगता है क्या बहुत सारे बच्चे अभी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से 0.01% भी हमने आज तक आइडेंटिफाई नहीं किया है. तो आप सोचेगा 10-15% जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें डिसलेक्सिया की समस्या है.
5: ओके. और आप मुझे बताइए कि अगर ये बच्चे सामान्य बच्चों की तरह अगर पढ़े तो क्या उन्हें वो सर्टिफिकेशन या पढ़ाई में कोई राहत, ये क्या क्या सिस्टम होती है?
6: जी, तो जो है बच्चों को किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी क्लिनिक होगी, वहां से उनको सर्टिफिकेट मिलती है. लेकिन उसके लिए उनको स्कूल से लेटर लेके जाना है. स्कूल रेफर करेगा तो ही हॉस्पिटल्स जो है एंटरटेन करते हैं. और वहाँ टेस्ट होता है, IQ टेस्ट, एजुकेशनल टेस्ट. और अगर डिसलेक्सिया के लक्षण है और उनको डायग्नोसिस मिलता है तो स्कूल को बहुत सारे जो है सुविधाएं है बच्चों को देना है. जैसे एक्स्ट्रा टाइम एग्जाम के वक्त लैंग्वेज में एग्जेम्पशंस होते हैं. 3-4 लैंग्वेज के जगह पे बच्चा 2 ही लैंग्वेज पढ़ेगा या कभी 1 ही लैंग्वेज डिपेंड होता है. मैथ्स

0: रिलीफ मिलता है, लोअर लेवल मैथ्स कर सकते हैं, साइंस के जगह दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, बोर्ड्स के डिफरेंट फैसिलिटीज है उस हिसाब से, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, सब बोर्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट या डिटेल रिपोर्ट जरूरी है, तो वो हॉस्पिटल जाना या किसी सेंटर पे जाना बोर्ड पे डिपेंड होता है कहाँ से उनको वो डायग्नोसिस चाहिए, और स्कूल को वो सब सुविधाएं देनी है, क्लास में जो है बोर्ड से कॉपी करने में बच्चों को दिक्कत होती है तो फोटोकॉपी नोट्स प्रोवाइड करो, या एक बड़ी सिस्टम होता है जो बच्चा काम में तेजी से करता है और अच्छी तरह कर पाता है, उसके साथ जो बच्चे को डिस्लेक्सिया है उसके साथ उसको बिठाइए ताकि वो उसकी मदद कर सके।
1: ओके आप मुझे बताइए, आपका 30 साल से भी ज्यादा का अनुभव है, अपने फोनिक्स और अंग्रेजी साइंस मैथ्स इन पर भी गौर करके बच्चों को पढ़ाया है ना, खेल में भी उन्हें अग्रेसर किया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके इस सफर में माता पिता की सोच में बदलाव जरूर आया होगा ना, तो आप हमारे श्रोताओं को या पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगी?
0: मेन थिंग ये है क्या आपके बच्चे में आपको बिलीव करना है, आपको बिलीव करना है क्या आपके बच्चे में पोटेंशियल है, वो आपका बच्चा कुछ कर सकता है, बन सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बिलीव और होप, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है, और आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि हमारे बच्चे को मदद की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप पेरेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे आपके बच्चे को मदद नहीं मिलेगी, कोई आपके बच्चे को मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप खुद एक्सेप्ट नहीं करते हो कि मुझे कुछ मेरे बच्चे के लिए करना है।
1: okay.
0: ये हमने देखा है, क्योंकि पेरेंट्स में डिनायल बहुत होता है और गिल्ट फीलिंग्स, हर एक पेरेंट कम्स विद दिस फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड डिनायल, तो उसमें वक्त निकल जाता है, तो वो वक्त बहुत ही प्रेशियस है, उसे हाथ से निकलने मत दीजिएगा।
1: जी मैम, आपने आज अपने कीमती समय में से वक्त निकालकर हमारे कार्यक्रम में शरीक होना पसंद किया, और साथ ही हमारे सारे श्रोताओं को और हमें भी अपनी बातों से अवेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। FM रेनबो की ओर से मैं आर जमित और हमारे सारे श्रोताओं की ओर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ।
0: शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्या मुझे आपने ये मौका दिया पब्लिक अवेयरनेस के लिए, थैंक यू।
1: जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे बातें मसर्रत खान जी से, आज उन्होंने अपनी बातों से हम सभी को जो ज्ञान दिया है, हम चाहेंगे कि अपने इर्द गिर्द ऐसे बच्चे अगर आपको दिखाई दे तो जरूर उन पर गौर करें, और क्या वो डिस्लेक्सिया के शिकार तो नहीं हुए हैं, इस पर विचार विमर्श कर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जरूर ले जाए। आरजे अमित आज इसी बात के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेगा, जल्दी हमारी अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं चाहूंगा आप FM रेनबो सुनते रहें, ठीक 11 बजे समाचार सुनना, और समाचार के उस पार हमारे FM स्टूडियो में अन्य गेस्ट आए हैं जो कि वैशाली पारिक के संग गुफ्तगू करते हुए आपको एक नए सब्जेक्ट पर कुछ बातें सुनाएंगे, बने रहना FM रेनबो पर, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर।

चुपके से कोई आकर दिल में बस जाता है। सैड मोमेंट को एक पल में रंगीन बना देता है। फुल ऑन धमाकेदार गानों के साथ आपको एंटरटेन करता है। ये है आप ही का अपना दिल से दिल तक जुड़ने वाला रेडियो स्टेशन 107.1 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर अब तक के प्रमुख समाचार। संसद का मॉनसून सत्र आज शुरू होगा। यह सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के सत्र में 19 बैठकें होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आशा व्यक्त की है कि संसद सदस्य संविधान की गरिमा और संसदीय परंपराओं एवं मर्यादाओं का पालन करते हुए सहयोग की भावना से कार्यवाही में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि विधायी एवं अन्य संसदीय कार्यों का सुचारू संचालन और अधिकतम कार्य निष्पादन सामूहिक जिम्मेदारी है। श्री बिरला ने आगे कहा कि इससे जनता का विश्वास और मजबूत होगा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कद बढ़ेगा। समाचार में आगे, स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में मौजूद चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप जीता। फ्रांसीसी स्ट्राइकर किलियन एम्बापे अब फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट की विजेता है। वे एक से ज्यादा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। स्पेन के कप्तान रोड्री ने न सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई बल्कि उन्हें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया और गोल्डन बॉल अवार्ड भी मिला। गोल्डन ग्लव अवार्ड स्पेन के उनाई सिमोन ने जीता, जबकि यंग प्लेयर अवार्ड उनके साथी खिलाड़ी पाउ कुबारसी को मिला। ईरान में अस्थिरता और संघर्ष में हुई हाल की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। दूतावास ने सुरक्षा हालात में सुधार आने तक किसी भी उद्देश्य के लिए ईरान की यात्रा करने की इच्छुक भारतीय नागरिकों को फिलहाल यात्रा टालने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि ईरान में पहले से रह रहे भारतीय नागरिकों को उपलब्ध उड़ान विकल्पों के जरिए अंशकालिक तौर पर ईरान से बाहर निकलने का विचार करना चाहिए। और समाचार के अंत में खबर है मौसम से जुड़ी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम ब्रेक फ्री।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जब बातें दिल से दिल तक जुड़ जाती हैं तो कभी कभी ऐसा मौका भी मिलता है कि हमारा शो खत्म होने के बाद भी हम बने रहते हैं, और आज ऐसा ही हुआ है। FM रेनबो पर आपका मनमीत आरजे अमित एक और घंटे तक आप सभी का साथी बना रहेगा। हम चाहेंगे आप हमारे संग बने रहना। ब्रेक फ्री इस कार्यक्रम में मैं आरजे अमित आप सभी का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। हम चाहेंगे ब्रेक फ्री में

कई जबरदस्त बातें, उतनी ही जबरदस्त गीतों की बौछार हम करते रहेंगे और साथ ही आपकी चाहत को भी हम जरूर मद्देनजर रखेंगे। तो सभी से दरख्वास्त रहेगी कि आप जरूर हमसे बने रहना, क्योंकि कहते हैं कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, लेकिन कुछ लोग इसे सच साबित भी कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बेंगलुरु की महज 2 साल की नन्ही अकीरा ने 7 रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं तो शायद आपको भी यकीन न हो। मुझे भी पहले यही लगा कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही होगी बात, है ना, लेकिन जब मैं इसके बारे में जानने लगा तो महसूस हुआ कि ये असंभव की सीमाएं अक्सर हमारी सोच बनाती हैं, हमारी क्षमता नहीं। आज ब्रेक फ्री में बात उसी सोच की जो हमें अपनी बनाई हुई दीवारों से बाहर निकलना सिखाती है।

0: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
0: जो छू लेते हैं आपका मन।
1: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा,
0: हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
1: ओ रंग रे
0: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से, जो पहुँचती है आपके दिल तक ओनली ऑन FM रेनबो।
2: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
3: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
2: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं।

आज 11:16 होने आए हैं और मैं हूं आपका मनमीतार जमी जो कि ब्रेक फ्री में आप सभी के संग जुड़ा हुआ हूं। हमारे कई सारे श्रोता हमें मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं चलो अच्छी बात है आपने हमारे लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाला। मैं कहना चाहूंगा एफएम रेनबो ये एक ऐसी जगह है जहां से आपसे जुड़े रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुशबू जब फूलों से गुजरती हैं तो फूलों की संगत में वो भी खुशबूदार हो जाती हैं और हम भी चाहते हैं कि आप सभी की संगत में यूं ही रहें। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। इसी अवसर को अगर आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ बातें सामने आती हैं। अब देखिए अकीरा की कहानी अगर हम आपके बारे में आपसे साझा करें तो अकीरा की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके रिकॉर्ड नहीं है बल्कि उसका वो निडर मन है जिसे अभी तक मैं नहीं कर सकती ये कहना आया ही नहीं। बचपन की खूबसूरती यही तो होती है ना, तभी डर ये शब्द ठीक से पता ही नहीं होता, वहां सिर्फ कोशिश होती रहती है। अब देखो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अनुभवों के साथ कई बार डर मन में घर करने लगता है, फिर हम अपने ही मन में सीमाएं खींच लेते हैं। शायद बंधनों को तोड़ने की शुरुआत यहीं से तो होती है जब हम उन अदृश्य सीमाओं को पहचान कर उन्हें मिटाने का साहस करते हैं।

दोस्तों आज हमारे से जुड़ने वाले कई सारे श्रोता है, उनमें कुछ नाम सामने आ रहे हैं जैसे कि भारती और दुर्गेश नागनपुरी जी, अशोक पाटिल वर्ली से, पंकज मोहन जी हैं, सुरेश वैष्णव जी भी मैसेज करते हैं और कल्पना राजू जी उल्लासनगर से हमें मैसेज कर रही हैं, आदर्श कनौजिया जी भी हमारे संग दादर से जुड़े हैं, फिरोज सिकानपुरिया जी हैं, दादर से बाबा है, मंगेश जोशी, प्रणव शिंदे जी और दीपा पालकर जी, शुभलक्ष्मी मस्तकार, अनिल चिरलेकर उरन से और कई सारे साथी हैं जैसे कि राकेश माथुर जी, महेश पाटकर जी, सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे कहना चाहूंगा कि बने रहना एफएम रेनबो पर, बस आपको सुनाता जाऊंगा कुछ ऐसे सदाबहार हिट नंबर्स, बस उन गीतों के साथ आप एंटरटेन होते रहना और एफएम रेनबो पर बने रहना।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जब कभी बातें होती हैं हमारे आसपास के अनगिनत लोगों की, तो आसपास ऐसे भी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने किसी दुर्घटना में अपने हाथ पैर या शरीर का कोई हिस्सा खो दिया हो, लेकिन अपने हौसले को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी मेहनत से नए कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे लोगों को देखकर समझ आता है ना कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं है, बल्कि उसका आत्मविश्वास होता है। जब इरादे मजबूत हो तो मुश्किलें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बन जाती हैं। और मैं मानता हूं कि यही है असली आजादी, हार मान लेने की सोच से आजादी। चलिए आज आपको एक और गाने की ओर लिए चलते हैं और सुनाएंगे ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में कुछ सदाबहार गीतों की ये प्लेलिस्ट आपका मनमीत आरजे अमित की ओर से। बने रहना FM रेनबो।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

आज देखते देखते 11:46 होने आए हैं। 11:46 में आप सभी को जो बातें हम सुना रहे हैं, उस बातों में अब ज़रा सोचिए कि एक तरफ वो लोग होते हैं ना जो तमाम मुश्किलें सह लेते हैं, मगर तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने डर पर जीत हासिल करते हैं। दूसरी ओर वो मासूम बच्ची भी हैं जिसने शायद अभी डर को जाना ही नहीं है। कितना दिलचस्प फर्क है ना। एक को डर से लड़कर आगे बढ़ना पड़ा और दूसरे के मन में डर ने अभी दस्तक ही नहीं दी। शायद हम सब के भीतर भी कभी वो निडर बच्चा जरूर था जो गिरकर भी मुस्कुराते हुए फिर खड़ा हो जाता था। सफलता यानी उसी खोए हुए साहस को फिर से खोज लेने का नाम ही तो है। तो आज मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप क्या चुनेंगे? डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत, या फिर एक ऐसा मन जिसने डर की परिभाषा ही कभी सीखी ना हो? दोस्तों, आपकी सोच किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है, इसे जरूर याद रखिए। जिंदगी की सबसे ऊंची उड़ान वही भरता है जो अपने मन के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। हर दिन हर पल आजाद रहिए। अपने मन से पूछिए कि अगर वो डर से मुक्त होता, आजाद होता, तो क्या करता? वो कीजिए आप। एकदम से नहीं हो पाएगा पता है, पर धीरे धीरे करने से कुछ भी असंभव तो नहीं है। बस किसी के दुख को या किसी के दुख का या दर्द का कारण ना बने आप। बस बिना ब्रेक फ्री ये करने का प्रयास कीजिए, तब आपको मजा आएगा और आप ये बिलीव करोगे कि आपकी वजह से किसी के जीवन में सावन आया है, खुशी का सावन। सुनाएंगे नेहा कक्कर और रोहन प्रीत की आवाज़।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, सुबह के 12 बज चुके हैं। आकाशवाणी के FM रेनबो पर दोपहर के समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनाव में मोल्डोवा की राष्ट्रपति माया सेंडू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्डोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसु से भी मिलेंगी और मोल्डोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत करेंगी। इसके बाद वे एक व्यापार फोरम को संबोधित करेंगी और मोल्डोवा यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू भारतवंशियों से भी मिलेंगी। समाचार में आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि मानसून सक्रिय और उत्पादक बना रहे और मानसून सत्र भी उत्पादक सिद्ध हो। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर आज किए हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। समाचार में आगे, मुंबई के मानखुर्द इलाके में आज सुबह बेस्ट की बस के डिवाइडर से टकराने के बाद 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा सायन पनवेल राजमार्ग पर एक अस्पताल के सामने हुआ। और समाचारों के अंत में, दिल्ली पुलिस ने आज कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की कोशिश में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन से जंतर मंतर की ओर मार्च कर रहे सैकड़ों छात्रों और युवा कार्यकर्ताओं को तीतर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये जानकारी दी। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। अब आप सुन पाएंगे अगला कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जैसे समय का भैया आगे चलता है, भैया हम आगे बढ़ना जानते हैं। कभी कभी मुश्किलों का सामना करते करते हम थोड़े से पीछे रह जाते हैं, मगर हमें आगे बढ़ना काफी जरूरी होता है। ठीक इसी तरह सुबह का वक्त बीतकर अब हम दोपहर के वक्त में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को मैं गुड आफ्टरनून कहना चाहूँगा और एक बात जरूर ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हर दिन आप 24/7 हमारे एफएम रेनबो पर जुड़े रहते हैं ना, बस उसी की वजह से हमारा हर शो करने में हमें ताकत आती है, हिम्मत आती है और आप हमें इंस्पायर कर जाते हैं, क्योंकि आप सभी की चाहत की वजह से ही हमारा हर दिन बनता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, म्यूजिक कैफे इस प्रोग्राम के आगाज में ये गीत स्पेशली आप सभी के लिए आरजे अमित की ओर से, कि हम जहां भी रहें, कहीं भी रहें, बस आपकी याद हमारे साथ होती है। म्यूजिक कैफे में कुछ यूथ रिलेटेड और करंट अफेयर्स की बातों से ये सफर हम तय करने वाले हैं। बने रहना एफएम रेनबो पर।

किसी की यादों के संग तो हम जरूर आगे बढ़ते हैं या जिंदगी गुजार लेते हैं, मगर जिंदगी गुजारते वक्त कुछ अनोखे काम भी हम सभी को इत्तला कर देते हैं कि किस तरह कचरे से भी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है। पाली हिल में ये प्रोजेक्ट कुछ सालों पहले, मतलब लगभग 10 सालों पहले शुरू तो था बांद्रा के पाली हिल में, बट वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से बिजली इस प्रोजेक्ट को अब बीएमसी फिर एक बार शुरू करने की तैयारी में है और ये परियोजना जो है वो उसे आधुनिक बनाया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये अनोखा प्रयोग किस तरह होता है, इसमें अपना योगदान देने के लिए या फिर इससे कुछ सीख लेने के लिए हमारा नेक्स्ट जनरेशन अगर आगे आए तो उन्हें ये भी पता चले कि सिर्फ टेक्निकली सारी चीज़ें नहीं हो सकती, AI या अन्य कई सारे ऐप पर डिपेंडेड हम सभी लोग ज़रूर हैं, मगर क्या सारी चीज़ें ऐप से मुमकिन हो पाती हैं? जज्बात बयां हो सकते हैं? नहीं ना। इसीलिए कहना चाहूँगा बस ये दर्द जब करारा होता है उसे समझने के लिए जज्बात ही ज़रूरी होते हैं। FM रेनबो पर बने रहना आपका मनमीत आरजे अमित के संग और सुनते रहना म्यूजिक।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

12:16 होने आए हैं। म्यूजिक कैफे में आप हमारे संग बने हुए हैं। ठीक 12:30 आप स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुन पाएंगे NCERT उमंग। हमारे संग बने रहना। वैसे देखने जाए तो फुटबॉल का फीवर हर किसी पर चढ़ा हुआ है ना। कल तक तो कई सारे घरों में लेट नाइट जाकर वो फुटबॉल का फाइनल देखने का जज्बा कुछ और ही था। कई घरों में बच्चे भी बड़े इत्मीनान से ये मैच देखने की चाहत में जगे हुए थे। सुबह का स्कूल हो ना हो मगर हमें मैच देखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। ये प्यार होता है और बचपन से जब खेलों की दुनिया में बच्चे कूद जाते हैं ना तो उन्हें किसी ना किसी खेल से प्यार हो जाता है, और जब खेल से प्यार हो जाता है तो खेल की दुनिया के कई सारे सितारे भी उनके पसंदीदा बन जाते हैं। अब एक ऐसी कहानी सामने आती है कि जिन्हें हम आइडॉल मानते हैं वो अपने बचपन में हमें नहलाते हैं और कुछ सालों के बाद ऐसा मौका आता है कि हमें उन्हीं के अगेंस्ट खेलने का मौका मिल जाता है। ये कोई आसान बात नहीं होती ना। मेसी से जुड़ा यह किस्सा कल बहुत बार लोगों ने याद किया। हम यही चाहते हैं कि यूथ आज का इतना फोकस्ड है कि वो कभी भी अपने फोकस से हटता नहीं है, वो उसके पीछे दौड़ता रहता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। आप सभी को मैं यही बतलाना चाहूंगा कि आज का यूथ हमारे भारत देश का भविष्य है। वो फोकस रहेगा तो बात जरूर बनेगी। और आप भी फोकस रहना भैया, कहीं जाना मत। 107.1 FM रेनबो पर ही फोकस रहना और ट्यून करके आरजे अमित के संग बने रहना। बस कुछ ही देर में और एक गीत सुनाऊंगा, तब तक सुनिए मोहित चौहान की आवाज इस गाने के साथ।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharati.gov.in/nipp वेबसाइट पर जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

0: लेकर आते हैं हम जज्बातों के नए रंग।
1: मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी,
0: जो छू लेते हैं आपका मन।
1: मस्त मगन बस तेरा नाम दोहरा,
0: हर आरजे का है एक अलग ही रंग।
1: ओ रंग रे
0: क्योंकि यहाँ से हम लेकर आते हैं बातें दिल से, जो पहुँचती है आपके दिल तक ओनली ऑन FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अब स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओ, जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश कालिया जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: शब्द तभी अमर होते हैं जब वे केवल लिखे नहीं जाते बल्कि जिए भी जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिनेश काले इस सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतनमाला जी का।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल।
1: और बड़ोदरा पंचमहल गुजरात से रवि जोशी जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
1: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का संदेश आया है, लिखते हैं,
2: नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत चार प्रसिद्ध झीलों के बारे में गहन और दिलचस्प जानकारी प्रदान की, सुनकर हम अभिभूत हो गए। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप विश्व के प्रमुख बांधों और प्रमुख पुलों पर भी ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत जानकारी मुहैया करवाने की कृपा जरूर करें। आपको इस हेतु अग्रिम धन्यवाद और आभार।
1: जी, सुहाना चौक ग्राम जसवाड़ी से सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आंखों से नेत्रहीन हूं। मैं प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूं। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियां, कविताएं और जानकारियां सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है।
2: धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि कंगारू के कितने पैर होते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, कंगारू के चार पांव ही होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंगारू की पूंछ भी एक मजबूत अंग होती है जो उसके चलते समय उसके संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। वो कई बार चलते हुए अपनी पूंछ का भी सहारा लेता है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो पांच पैरों से चल रहा हो। इसलिए बोलचाल में कहा जाने लगा है कि कंगारू के पांच पैर होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूंछ को पांव नहीं माना जा सकता।
1: जी, तो श्रोताओ अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है?
2: प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग मिट्टी की पटियाओं पर पेंसिल नुमा नुकीले कील से लिखते थे जिसे कीलाक्षर कहा जाता था। कीलाक्षर यानी कीलों से लिखे हुए अक्षर।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमने पूछा था श्रोताओं कि पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। पेपर शब्द मिस्र में नील नदी के तट पर पाई जाने वाली पेपरिस वनस्पति या घास के नाम से आया है।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि कोडेक्स किसे कहते हैं?
2: कोडेक्स आधुनिक पुस्तक के प्राचीन रूप को कहते हैं जिसमें पन्नों को किनारे से सिलकर या बांधकर पुस्तकें बनाई जाती थीं।
1: जी, और हमारा अंतिम प्रश्न था, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
2: इसका उत्तर है साथियों, जोहन्स गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार सन 1440 में किया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है श्रोताओ, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर

0: 1-800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें युवराज सिद्धार्थ के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि पशु पक्षी भी हमारे प्रेम और करुणा के अधिकारी हैं।
2: चलो मित्र सिद्धार्थ, उद्यान की ओर चलते हैं, सरोवर के पास। कैसी शांति है, पक्षी नीड़ों की ओर लौट रहे हैं। वहां देखो, उस पेड़ पर कैसे वो चिड़िया अपने बच्चे को दाना खिला रही है, अति सुंदर। और तनिक उधर देखो, उद्यान के बाहर कैसे एक बछड़ा अपनी माँ की ओर दौड़ा चला जा रहा है, और गाय अपने बछड़े को लाड़ कर रही है।
3: साथियों, ये वार्तालाप हो रहा था युवराज सिद्धार्थ और उनके मित्र वसु के बीच। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो कपिलवस्तु नगर का एक ग्राम उद्यान था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गणराज के राजा थे, जिसकी राजधानी थी कपिलवस्तु। युवराज सिद्धार्थ ही आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाया। प्रारंभ में उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं से भरपूर था। आइए एक बार फिर से चलते हैं उस उद्यान की ओर, जहां दोनों मित्र वार्तालाप कर रहे हैं।
2: युवराज, तनिक ऊपर देखो, कितने सुंदर पक्षी हैं।
4: ये राजहंस हैं। ऐसा लगता है मानो हवा में तैर रहे हैं, और इतनी ही सुंदरता से वे पानी में भी तैर सकते हैं। ओह, देखो, एक राजहंस नीचे की ओर गिर रहा है।
2: हाँ, लगता है उसे तीर लगा है।
4: प्यारे पक्षी, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। मैं हूं ना, न जाने किस निर्दयी ने इसे घायल कर दिया, भला इसका क्या दोष है।
5: दोष ये है कि ये सुंदर है, प्यारा है, सबको पसंद आता है।
4: क्या सुंदर होना और सबका प्यारा होना कोई दोष है? प्यारे हंस, मैं तुम्हारा ये तीर निकाल देता हूं, फिक्र मत करो। ये निकाल दिया, अब तुम मेरी गोद में थोड़ी देर विश्राम कर लो। मित्र, कोई भी व्यक्ति जिसके पास हृदय है, इन निर्दोष पक्षियों को मार ही नहीं सकता। तुम जरा दौड़कर राज वैद्य से इसके लिए कोई औषधि तो ले आओ।
2: हाँ मित्र, अभी जाता हूं।
3: युवराज सिद्धार्थ ने हंस को विश्राम करने के लिए पास के ही एक कुंज में लिटा दिया और वसु के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में उनके चचेरे भाई देवदत्त आ पहुंचे। वे इधर उधर देख रहे थे, मानो कुछ खोज रहे हों।
6: कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, कुमार सिद्धार्थ, अभी मैंने एक उड़ते हुए हंस को तीर मारकर नीचे गिराया था। मैंने अपनी आंखों से उसे गिरते हुए देखा था, वो इधर ही कहीं आया है। तीर धनुष पर मेरा लक्ष्य अब भली भांति सद गया है। ये बात मैं कल गुरुजी को बताऊंगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे। तुम गुरुजी के सामने मेरी गवाही दोगे ना?
4: अवश्य दूंगा देवदत्त, और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि इसका प्रमाण वो हंस है जिसे तुमने मारा है।
6: हाँ, तो हंस तुम्हारे पास है, लाओ उसे मुझे दे दो।

0: क्यों दे दो? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न है।
1: भाई इसलिए दे दो क्योंकि मैंने उसे मारा है।
2: लेकिन मैंने इसे बचाया है।
0: तुम राजकुमार हो इसलिए मुझे धमकी देना चाहते हो? मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं दोगे। इसका निर्णय तो अब राज दरबार में ही होगा।
3: तो साथियों, दूसरे दिन दरबार लगा हुआ था।
4: महाराज की जय हो,
5: महाराज की जय हो,
6: महाराज की जय हो।
3: प्रतिहारी ने सभी प्रकरणों की जानकारी दी और बताया कि आज कुमार देवदत्त भी एक प्रकरण न्याय के लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ भी उपस्थित थे।
7: कुमार देवदत्त को प्रस्तुत किया जाए।
0: महाराज को प्रणाम करता हूँ। महाराज, मेरा कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, जिसे मैंने मारा था। वो मुझे मेरा हंस नहीं दे रहे, मुझे न्याय चाहिए।
7: राजकुमार सिद्धार्थ, क्या ये वही हंस है जो आपकी गोद में है?
2: महाराज को प्रणाम करता हूँ। जी महाराज, ये वही हंस है। मेरा कहना है कि कुमार देवदत्त ने इस हंस को मारा है, लेकिन मैंने इसे बचाया है। अतएव मैं ये हंस इन्हें नहीं दे सकता।
7: लेकिन सिद्धार्थ, देवदत्त ने इस हंस का आखेट किया है। नियम के अनुसार आखेट वीर का अधिकार है। वीर आखेट को छोड़ नहीं सकता।
2: जी महाराज, लेकिन नियम तो ये भी कहता है कि वीर शरणागत को भी नहीं छोड़ सकता। हमारी शाक्य राजवंश की परंपरा और शास्त्रों का नियम तो ये भी कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
0: पर महाराज, मैंने पहले इस हंस को मारा है, इसलिए ये मेरा है।
2: जी, पहले मारा था, तभी तो वो मेरी शरण में आया है। बिना मारे वो मेरी शरण में कैसे आता?
7: महामंत्री, समस्या जटिल हो गई है। क्या आप कोई मार्ग सुझा सकते हैं?
8: जी महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर सकता हूँ। अब तो निर्णय ये हंस ही करेगा।
7: निर्णय ये हंस ही करेगा? भला वो कैसे? आज्ञा है।
8: महाराज, मेरा आग्रह है कि हंस को यहाँ इस आसन पर बैठाया जाए।
3: हंस को आसन पर बैठा दिया गया। हंस भयभीत था, लेकिन सिद्धार्थ उसे सांत्वना दे रहे थे। सभा स्तंभित थी, सभी फुसफुसा रहे थे।
9: पता नहीं ये हंस कैसे बताएगा गद्दी में बैठ कर
10: सिद्धार्थ को मिलना किसके पास जा
11: रहा है?
8: कुमार देवदत्त, आप कहते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। आसन के पास आइए और हंस को अपने पास बुलाइए।
0: ओ प्रिय हंस, मेरे पास आओ, आ जाओ, आओ मेरे पास, आ जाओ।
3: देवदत्त जितनी बार हंस को बुलाते, वो उतनी ही बार भय के मारे आसन से चिपक जाता। देवदत्त ने बहुत प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी।
8: अब मैं राजकुमार सिद्धार्थ को सामने बुलाना चाहूंगा और कहूंगा कि वे भी हंस को अपने पास बुलाएं।
2: प्यारे राजहंस, मेरे प्रिय मित्र, डरो मत, तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मेरे पास आ जाओ, अपने मित्र के पास आ जाओ, आ जाओ, घबराओ मत।
3: फिर क्या था, पलक भी नहीं झपकी थी। हंस ने अपने पंख फैलाए और उड़ता हुआ सिद्धार्थ की गोद में ऐसे आ चिपका जैसे एक बालक अपनी माँ की गोद में चिपक जाता है।

नीड और दूसरा शब्द था आखेट। तो इसका अर्थ आपको बता देते हैं। नीड शब्द का अर्थ है घोंसला और आखेट शब्द का अर्थ होता है शिकार। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, पशु पक्षियों का ख्याल रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और इसकी सूची बनाइए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन एकांत वशिष्ठ, कलाकार सुनील लोहिया, शशांक शर्मा, बबीता रंजीत और फरहान नकवी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो।
1: ये कार्यक्रम विभिन्न जीवन दर्शनों की चर्चा करता है और संदेश देता है कि हम सभी उसी अनंत सत्ता के अभिन्न अंग हैं।

पौराणिक उपनिषद छांदोग्य से एक कहानी है तद् त्वम् असि। उपनिषद महावाक्य स्वरूप में लघु है परंतु बहुत गहन विचार समाये हुए है। चार प्रमुख महावाक्य हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म अर्थात वो प्रज्ञानम ही ब्रह्म है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से तत् त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म तुम ही हो। यजुर्वेद के बृहद अरण्यक उपनिषद के ऐत

हमारे उपनिषद से अयम आत्मा ब्रह्म अर्थात ये आत्मा ब्रह्म है। अथर्ववेद के मांडर के उपनिषद के ऐतरे उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। और सामवेद के छांदोग्य उपनिषद से महावाक्य तत् त्वम् असि एक आध्यात्मिक संवाद है गुरु पिता और शिष्य पुत्र के बीच।

पिता उद्दालक ऋषि हैं, महापंडित वेदों के ज्ञाता, धुरंधर दार्शनिक और तर्क वितर्क में निपुण, और उनके 24 वर्षीय जिज्ञासु पुत्र श्वेतकेतु 12 वर्षों की शिक्षा के बाद लौटे हैं।

0: क्या तुम उस ज्ञान से अवगत हो जिसके द्वारा हम सब कुछ जानते हैं और जो हमें जानना आवश्यक है?
1: तात, मैं उस ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगा।

0: क्या तुम शहद इकट्ठा कर रही इन मधुमक्खियों को देख पा रहे हो?
1: हाँ, हाँ तात।
0: भिन्न भिन्न फूलों से निकला हुआ रस जब एक हो जाता है तो वो शहद बन जाता है। तब शहद बनने के बाद वो कह सकता है कि मैं इस फूल का रस हूं या उस फूल का रस हूं?
1: नहीं तात।
0: इसी तरह जब कोई उस चेतना से एक हो जाता है तब उसकी अपनी पहचान समाप्त हो जाती है।
1: जी तात, फिर जगत में इतनी विविधता कैसे आई?
0: शुरुआत में केवल एक था और फिर एक को कई में प्रतिलक्षित किया गया। सृष्टि के जन्म से पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम और रूप से रहित एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आज भी विद्यमान है।
1: जी तात।
0: उसी ब्रह्म को तत्वमसी कहा गया। वो शरीर और इंद्रियों में रहते हुए भी उनसे परे है, आत्मा में उसका अंश मात्र है।
1: जी।
0: उसी से उसका अनुभव होता है, किंतु वो अंश परमात्मा नहीं है।
1: जी पिताजी।
0: वो उससे दूर है, वो संपूर्ण जगत में प्रतिभासित होते हुए भी उससे

0: वत्स श्वेत केतु।
1: जी तात,
0: क्या तुम जानते हो हम जिस अस्तित्व को देख नहीं सकते हैं तो हम कैसे जानते हैं कि वो विद्यमान है?
1: नहीं तात, मैं नहीं जानता हूं, कृपया मुझे समझाएं।
0: तो वत्स जाओ उस वट वृक्ष के पास और एक फल तोड़ कर ले आओ।
1: जो आज्ञा तात।

0: ये रहा फल तात।
1: बस अब इसे तोड़कर इसके दो टुकड़े कर दो।
0: जी पिताजी, इसमें तो सैकड़ों बहुत ही छोटे छोटे बीज हैं।
1: उनमें से एक बीज निकालो और उसे तोड़ो मेरे वत्स।
0: जी
1: और अब मुझे बताओ कि इसमें क्या देख रहे हो।
0: अब नहीं तो यहां तो कुछ भी नहीं है तात।
1: वत्स, तो फिर एक छोटे से बीज से एक विशाल बरगद का वृक्ष भला कैसे बन जाता है?
0: तो फिर तात, जिस अस्तित्व को हम देख नहीं सकते हैं, तो कैसे सब प्राणियों को जन्म दे सकता है तात?
1: मुझ पर विश्वास करो मेरे वत्स, वो सूक्ष्म बीज कुछ भी नहीं, स्रोत था विशाल बरगद वृक्ष का। एक अदृश्य और सूक्ष्म सार पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है। सर्वं तत्स्वयं स आत्मा, यही सर्वोच्च वास्तविकता है और यही सब में स्वयं विद्यमान है, यही आत्मा है।
0: मैं आभारी हूं पिताजी, आपने मुझे ज्ञान हासिल करने में मदद की है, जिससे अनदेखा देखा हुआ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात हो जाता है और यही सब में स्वयं मौजूद है। तत् त्वम् असि,
1: ईश्वर तुम पर अपनी अनन्य कृपा बनाए रखे।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वह ब्रह्म तुम ही हो। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार बाबला कोचर, प्रवीण शर्मा और प्रीति मिश्रा, ध्वनियांकन विकास सांगवान, आलेख डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वो ब्रह्म तुम ही हो। आशोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
3: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
2: कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के FM रेनबो पर स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम NCERT उमंग। अब आप सुन पाएंगे 1 बजे दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार और समाचारों के उस पार हमारा अगला कार्यक्रम हिट एंड हॉट।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। हिट एंड हॉट इस कार्यक्रम में मैं आपका मनमीत आरजे अमित आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आपने ट्यून इन किया है 107.1 एफएम रेनबो। वैसे तो देखने जाए तो हर पल कहीं ना कहीं कई सारे शूज के साथ हमारे आरजेज आप सभी का दिल बहलाते हैं। देखिए आज ऐसा मौका मिल गया कि सुबह 8 से 11 के बीच का सफर तय करने के बाद फिर 11 से 2 बजे तक भी हम आप सभी के संग बने रहे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और इन सभी गीतों के साथ बातों के साथ हमारे संग जुड़ने वाले जितने सारे श्रोता है ना, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए होती हैं, एक तो सांस और दूसरा साथ। अगर सांस टूट जाए तो हम सीधा ऊपर चले जाते हैं, मगर यदि साथ छूट जाए तो जीवन होते हुए भी, यानी जीवित होते हुए भी हम पल पल मरते हैं। आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बस इसी के लिए मैं हमेशा आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा। 8657661071 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताइए कि कितने सारे हमारे श्रोता हमारे संग बने हुए हैं और आज ऐसे सभी श्रोताओं के लिए आपकी पसंद लेकर हिट एंड हॉट में मैं आरजे अमित आया हूँ। हम चाहेंगे आप सभी अपनी अपनी फरमाइशें जल्दी जल्दी हम तक पहुँचाए और हमें बताएं कि कौन सा आपका पसंदीदा गीत आप मेरे इस शो में सुनना पसंद करेंगे। आगाज करते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज करने वाले अभिजीत कवाणकर और उनकी फैमिली से आई इस रिक्वेस्ट से। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, कुमार शानू की आवाज, आशिकी फिल्म का ये पॉपुलर नंबर।

मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में गाना आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज में फिल्म आशिकी से। वैसे देखने जाए तो आज ये हिट एंड हॉट का सफर तय करते वक्त हमारे संग बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं और इन सभी श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई जरूर है, मगर देखिए एफएम रेनबो का ये सफर तय करते वक्त अक्सर आज अमित कहता है ना कि बिखरने के लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढे। और अगर ये अवसर हमने ढूंढा है तो उसे सेलिब्रेट कैसे करेंगे भैया, अपने पसंदीदा गीतों के साथ क्यों ना करें। चलिए एक काम करते हैं, आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन करें 8657661071, इसे अपने मोबाइल में परमानेंटली सेव करें और बताएं कि कौन से आपके पसंदीदा गीत को आप सुनना पसंद करोगे एफएम रेनबो पर अपने नाम के साथ। हमें जरूर बताएं आप कहां से हैं और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए या फिर एफएम सेट के जरिए हमारे संग जुड़े हुए हैं। जैसे देखने जाए तो फिलहाल मंगेश जोशी, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और शुभलक्ष्मी, मुकेश कश्यप, साथ ही साथ पीयूष कुमार, रोहित राज, आर्यन राज, मुजफ्फर पूर्व बिहार से हमें मैसेज करते हैं, प्रणव शिंदे जी हमारे संग है, दीपा पालकर जी हैं, विजेंद्र घटोल अकोला से मैसेज करते हैं, स्वरण सिंह जी हैं, अजय साखोरे इंदौर से मैसेज कर रहे हैं, अभिजीत गवाणकर जी की ये रिक्वेस्ट हमने पूरी तो जरूर की, मगर अब हम चाहेंगे अगले पायदान पर एक ऐसा गाना प्रस्तुत करें जो राकेश माथुर ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम पुणे, सो लेट्स प्ले हिज रिक्वेस्ट राइट नाउ। इट इज फ्रॉम द फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, सलमान खान का वो अनोखा अंदाज हर किसी को भा गया था। चलो उनके संग हम भी थोड़ा सा पैदल चलते हैं और उदित नारायण की आवाज में खो जाते हैं इस गीत के साथ।

आज हमारे संग जुड़ने वाले श्रोताओं में एक नाम ऐसा भी जुड़ चुका है जो कि अपना नाम चेतन कुमार बताते हैं, और चेतन कुमार सुनना चाहते हैं एक ऐसा गीत जो विद्या बालन की एक बहुत ही मशहूर फिल्म से है। आइए सुनाते हैं आपको ये गीत, बने रहना FM रेनबो पर, हिट एंड हॉट में आपका मनमीत आर्यमित के साथ।

देखिए हर दिन बड़ा खास होता है ना, आज का दिन भी इसलिए खास है क्योंकि कुछ सलमान खान और गोविंदा के लवर्स जो है, उनके फैंस जो है, वो कहते हैं भैया आज के दिन कुछ सालों पहले की बात है ना, पार्टनर फिल्म रिलीज हुई थी और उसी फिल्म का एक गाना पंकज मोहर जी सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनकी ये चाहत पूरी कर देते हैं इस गीत के संग। यस, आज सुबह मस्त मुंबई के शो में प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे जी ने भी यही बात फरमाई थी, उनकी भी चाहत इसी गाने के साथ हम पूरी कर देते हैं। सुनते रहना FM Rainbow पर हिट एंड हॉट विद आपका मनमेत आर जावेद।

दिल्ली से प्रसारित होने वाले समाचार आप सुन रहे थे एफएम रेनबो पर, और उन्हीं समाचार के पश्चात अब फिर एक बार हिट एंड हॉट के बचे 20 समय के इस अंतराल में हम चाहते हैं आप सभी को आपके पसंदीदा गीतों की हम सैर कराए। उसमें पता है पहला नंबर किसका लग रहा है? ये है नाम जो राजस्थान से हमें मैसेज करते हैं, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, इनका पूरा परिवार। फिल्म दीवाना से कुमार शानू और साधना सरगम ने गाई, ये रचना सुनना चाहते हैं तो चलिए उनकी ये इच्छा पूरी कर देते हैं। और उसके बाद DDLJ का एक बहुत ही मशहूर गाना फिरोज सिगानपुरिया की रिक्वेस्ट के खातिर बने रहना एफएम रेनबो पर, आपका मनमीत आरजे अमित के संग।

इतनी मधुर आवाज के संग ये गाना आपके कानों तक पहुंचा और देखते देखते देखो 1:48 हो चुके हैं, ठीक 12 मिनट के बाद आरजे अमित स्टूडियो से विदा लेगा और आप सभी से जल्द ही अगले शो में मुलाकात करेगा। मगर अब फिरोज सिगानपुरिया जी की एक पहली फरमाइश DDLJ फिल्म से गाना है, उसके बाद स्मिता पालकर जी की एक फरमाइश है रावड़ी राठौड़ इस फिल्म से गाना, और फिर प्रणव शिंदे जी की फरमाइश फिल्म धड़क से। ये 3 गाने बैक टू बैक प्ले होंगे और अब हम आप सभी से विदा ले रहे हैं, जल्द ही अगले शो में हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बस खुश रहना, मुस्कुराते रहना और साथ ही साथ औरों की खुशी में भी आप शामिल हो जाना, देखो बहुत मज़ा आता है। चलो थोड़ा सा झूम कर देखते हैं, बरसात चल रही है, बरसात में मेरा तो नाचने का और भीगने का मन कर रहा है। भैया आपका क्या मन कर रहा है हमें बताइए 8657661071 पर। मिलते हैं जल्दी अगले शो में, गुड डे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई, कहा इससे देश का कल्याण होगा। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे चौथे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का नीट मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: मुझे अत्यंत दुख के साथ सभा को कतर के फादर अमीर महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन के बारे में भी सूचित करना है। महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। सवेरे प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन की कार्यवाही चलने देने और सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया।
1: मेरा आग्रह है कि सदन का प्रथम दिन है और इस परंपरा को तोड़ना चाहिए कि प्रथम दिन सदन नहीं चलेगा। मैं हमेशा आपसे आग्रह कहता हूं कि आपको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय मिलेगा। नियमों के तहत नोटिस दीजिए, सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है।
0: पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने शून्यकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे और इसके बाद 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नवनियुक्त और पुनर्नियुक्त सदस्यों को शपथ दिलाई गई। बाद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामला उठाने की कोशिश की।
2: टू पुट फोर्थ माय व्यूज अबाउट दिस पेपर लीक एंड नीट एग्जामिनेशन घोटाला, जो लाखों बच्चों की भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहां जंतर मंतर पे हजारों बच्चे आए हैं।
0: सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की।
3: आई अपील टू मेंबर्स अक्रॉस ऑल साइड्स ऑफ द हाउस टू अपहोल्ड द डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड डेकोरम ऑफ दिस ऑगस्ट इंस्टीट्यूशन। व्हाइल डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर इंटीग्रल टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन अ मैनर दैट प्रिजर्व्स द सैंक्टिटी ऑफ द हाउस।
0: शोर शराबा जारी रहने पर सदन की कार्रवाई कई बार बाधित हुई और अब सदन की कार्रवाई 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में आज पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने आज कहा कि विपक्ष को संसद में रचनात्मक मुद्दे उठाने चाहिए। मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद के बाहर आकाशवाणी से बातचीत में श्री झा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए कीमतों को नियंत्रण में रखकर सराहनीय काम किया है। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार में स्टार्टअप्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं।

0: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय आज अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा वी मोहन की पीठ इस मामले से संबंधित चार अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में न्यायालय के समक्ष अपनी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस गुट को पार्टी के 3 बैंक खातों को संचालित करने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने इन 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था। इनमें 440,42,00,000 रुपए जमा थे। ये कार्रवाई राज्य पुलिस द्वारा दर्ज FIR के आधार पर की गई जांच के सिलसिले में की गई थी। संसद के मॉनसून सत्र के मद्देनजर नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, तालकटोरा रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, जनपथ तथा आसपास के मार्गों से बचने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कुछ मीडिया चैनलों पर प्रसारित उन दावों का खंडन किया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित तौर पर बल प्रयोग और गिरफ्तारियों की बात कही गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सेवा तीर्थ, राजीव चौक और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर अब इंटरचेंज सुविधाएं और गेट खुल गए हैं। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ आज अगरतला पुलिस मुख्यालय में मृत पाए गए। उनके निधन का कारण अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण के अंतर्गत मोल्दोवा गणराज्य में अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। उनको किशिनाव स्थित राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माई सांदू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करना था। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: मोल्दोवा की पहली राज्य की यात्रा है, ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही है।
1: अमेरिका ने लगातार 9वें दिन भी ईरान पर हमले जारी रखे जिसके कारण होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने दक्षिण पश्चिम ईरान के होर्मुज शहर को निशाना बनाया, वहीं जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान के नए हमलों की सूचना दी है। अमेरिका ईरान के बीच का टकराव पड़ोसी देशों तक फैल गया है। इस बीच जॉर्डन के सरकारी प्रसारक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि देश के वायु रक्षा प्रणालियों ने ईरान से जॉर्डन की ओर दागी गई 3 मिसाइलों को बीच में ही रोक दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। उत्तराखंड में सुरक्षा कारणों को देखते हुए एहतियात के तौर पर आज चार धाम यात्रा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बारिश से मैदानी और पहाड़ी दोनों इलाकों में जनजीवन पर असर पड़ा है।
1: उत्तराखंड के कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी और चार धाम यात्रा मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की खबरों के मद्देनजर तीर्थ यात्रा को अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया है कि जहां भी सड़कें अवरुद्ध हो वहां तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था की जाए और यात्रा तभी दोबारा शुरू की जाए जब मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित घोषित कर दिए जाएं। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट और रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: उधर असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हैं। शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सेना, राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले तीन दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि पश्चिम मध्य अरब सागर के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों, उत्तरी तमिलनाडु तट के आसपास और उससे दूर अगले दो दिन के दौरान तूफानी मौसम रहने की संभावना है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप का इतिहास लिखा जा चुका है। स्पेन ने दूसरी बार पुरुष फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ स्पेन एक ही समय में पुरुष और महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता पहला देश बन गया है। इस हार ने अर्जेंटीना और लियोनेल मेसी के शानदार दौर का भी अंत कर दिया है। 48 टीमों के साथ ये अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप था। ये टूर्नामेंट अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में खेला गया। और अगर बात करें पुरुष क्रिकेट की तो इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में भारत को 27 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 3 विकेट पर 387 रन बनाए। भारतीय टीम 7 विकेट पर 360 रन ही बना सकी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र के सार्थक होने की उम्मीद जताई। सर्वोच्च न्यायालय में आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किशनौ में मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया संधु के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। और मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। शाम के ठीक 5:08 होने को हैं और स्टूडियो में आज मैं हूं आपके साथ आपके आज दोस्त अमिता और लेकर अपना वही सुनहरा पिटारा जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें और बहुत सारे गाने। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आज लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आखिर हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ऐसी कौन सी कहानी लेकर आई हूं मैं। वेल दोस्तों आज कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अगर उस कहानी से अगर आप कुछ सीख सके तो सच में सीख लेंगे और अगर शायद अगर आप ना सीख सके तो कोई बात नहीं, बस इग्नोर कर दीजिएगा। कहते हैं जिंदगी

में जो होता है उससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम उसके साथ क्या करते हैं। शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगे, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बात हुई। भाई आजकल दुनिया में हर दिन हर व्यक्ति आपको टेस्ट करेगा, ये समझ लीजिए कि हर पल आपके ही एक परीक्षा ही होती है। कोई सोशल मीडिया पर, कोई ऑफिस में, कोई ट्रैफिक में, तो कोई बस अपने शब्दों से। और हम क्या करते हैं, हम हर उस चुनौती को या उस आए हुए कमेंट को या फिर अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो बस हम भी लग जाते हैं उसे जवाब देने में। पर क्या सच में हर बात का जवाब देना ज़रूरी होता है? वेल, आज बात करेंगे इसी बारे में और जानेंगे आखिर क्या है फेस्टिंगर्स लॉ। पर साथ ही साथ बातों के साथ साथ म्यूजिकल ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में दिलवाले फिल्म का ये गीत, और इस गीत ने आप सभी को मजबूर कर दिया होगा, शायद नाच ना भी पाए आप तो क्या बात हो गई, आपके पैर तो ज़रूर थिरके होंगे। और आज ये गाना मैंने अभी आपको शाम के इस वक्त क्यों सुनाया, सोचिए ज़रा। इसीलिए सुनाया क्योंकि भाई सोमवार का दिन है, और सोमवार को वैसे ही जो ऑफिस जाते हैं उनके कंधों पर ऑलरेडी मंडे ब्लूज का भारी भरकम बोझ होता है, और उनको दिखाई देती है कि अरे भाई अभी तो शनिवार आने में और दिन बाकी है। तो बस उनके उसी बोझ को कम करने के लिए सुनाया उन सभी को जो इस वक्त अपने ऑफिस से लौट रहे हैं, ये सोच लें कि बस वीकेंड ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही जल्द वीकेंड भी फिर से आएगा और आप इसी तरह से उसे इंजॉय कर सकते हैं। 5:15 का वक्त दोस्तों सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं जिस बारे में लॉ का नाम मैंने आपको बताया, फेस्टिंगर्स लॉ। वैसे अब फेस्टिंगर्स लॉ क्या कहता है और आज क्यों इस बारे में बातें हैं, वो सारी बातें बाद में, पहले सुनाती हूँ आपको एक कहानी। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में गया, पर उसने एक तरकीब लड़ाई। उसने एक पत्थर उठाया और उसे दूर एकदम पूरे फोर्स के साथ फेंका। अब वो पत्थर पेड़ों से टकरा करके एक जगह पे गिर गया। उस पत्थर की आवाज़ जो थी पेड़ों से टकरा करके गिरने की, वो बाकायदा दो प्राणियों ने सुन ली, एक हिरन और एक जंगली भैंसा। अब हिरन ने सुना, अब इस बात का अंदाज़ा लगाना कि अब वो पत्थर कहाँ से आया, किसने उसे फेंका, लेकिन पत्थर की आवाज़ तो आई, पर उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वो चुपचाप से उसने अपनी हरी घास खाई और वो वापस घने जंगलों में चला गया। वहीं दूसरी ओर जो जंगली भैंसा था, उसे लगा कि किसी ने उसकी शांति में खलल डाल दिया है। उसे आया बहुत तेज गुस्सा, और इसी के चलते वो यहाँ वहाँ पेड़ों पर जाकर के अपना गुस्से की भड़ास निकालने लगा, और शिकारी समझ गया कि आखिर हलचल कहाँ पर हो रही है, और उसने बस निशाना साधा और उस जंगली भैंसे को अपना शिकार बना लिया। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि ज़रूरी नहीं कि आप हर एक्शन पर रिएक्शन दें, हो सकता है कि कभी वो रिएक्शन उल्टा पड़ जाए। फिलहाल कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, सुनाती हूँ आपको अगला गीत और बाकी बातें गीत के बाद।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव योर जिंदगी और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं फेस्टिंग स्लो की। और जैसे कि एक छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई, तो ये जो लॉ है फेस्टिंग स्लो, ये कहता है कि जिंदगी का सिर्फ 10% जो हिस्सा होता है, या अगर उसे और भी मैं छोटी इकाई में कर दूं तो पूरे दिन का जो सिर्फ

10% घटनाएं होंगी, शायद वो हमारे हाथ में नहीं होंगी या हमारे काबू के बाहर होंगी, लेकिन बाकी का जो 90% है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन सारी बातों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। जिंदगी का सिर्फ 10% जो हिस्सा होता है वो उन घटनाओं से बनता है जो हमारे साथ होती है, जिन पर हमारा कोई बस नहीं, लेकिन बाकी के जो 90% का फैसला होता है वो इस बात से होता है कि हम उन घटनाओं पर, उन चीज़ों पर जो हमारे साथ हुई है, उन पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अब ज़रा सोचिए, किसी ने आपको गुस्से में कुछ कह दिया, ये सिर्फ हुआ 10%। अब आप भी उसे गुस्से में जवाब देंगे, देते जाएंगे, पूरा दिन खराब कर लेंगे, रिश्ते बिगाड़ लेंगे, या फिर बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएंगे। बस यही तो है वो 90% जो हमारा रिस्पॉन्ड होता है उस 10% को लेकर। दोस्तों, आजकल एक बहुत अजीब सा ट्रेंड है, लोग पहले ही रिएक्ट करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अरे नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन समझदारी जो है वो इसका उल्टा करती है, वो रिएक्ट करती नहीं, वो रिस्पॉन्ड करती है, पहले सोचती है और उसके बाद प्रतिक्रिया देती है। 5:25 का वक्त, लव यू जिंदगी, सुन रहे हैं आप अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: सबके अलग है अंदाज,
1: कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज।

बहुत सारे हमारे लिसनर्स के मैसेजेस जो है वो इनबॉक्स में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम उन तक पहुँचें और उनको पढ़ लें। विजेंद्र घटोल का अकोला से मैसेज आया, लिखते हैं, कहानी बहुत ही अच्छी लगी और गाने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही फिरोज से गणपुरिया अपनी वर्ल्ड म्यूजिक लवर्स ग्रुप के साथ इस वक्त हमें सुन रहे हैं। और वहीं अमरावती से पंकज मोहोट का भी मैसेज आ गया है और लिखते हैं कि भाई बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग रहा है, कहानी जो है वो भी बहुत अच्छी सीख दे गई कि हमें कभी भी किसी बात पर जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, नहीं तो नुकसान किसी और को नहीं बल्कि खुद हमें ही होगा। वहीं अंधेरी ईस्ट से अंजू जी ने हमें नमस्कार भी लिख करके भेजा है और लिखा है कि भाई हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, इफ़ वी कैन इग्नोर इग्नोर इट। और लिखती हैं आगे कि कई बार लोग इसे एक अलग रिएक्शन के रूप में भी ले लेते हैं, पर उससे कोई बात नहीं, जो जिसका मन करे। भाई हम किसी और के मन को रोक नहीं सकते हैं, हम सिर्फ रोक सकते हैं तो अपने रिएक्शन को। और इसके साथ ही साथ इन्होंने भेजी है 2 कप चाय, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। तो अंजू जी, आप इस वक्त अपने घर पर हो या हो कहीं बाहर, मेरी तरफ से एक कप चाय इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। प्रकाश शिंदे लिखते हैं कि भाई कहानी लाजवाब लगी और गीत भी लाजवाब लगे। और वार्डवन से रजनीकांत पाटिल भी लिखते हैं कि भाई नमस्कार और थैंक यू गानों के लिए। दीपा पालकर भी इस वक्त गाने एंजॉय कर रही हैं और स्पेशली जब उन्हें टुकुर टुकुर गाना सुनने को मिला तो मुझे लग रहा है कि दीपा पालकर जी तो बहुत ही सच में थिरकने लगी होंगी। और वहीं अरविंद कुलकर्णी इचलकरण जी से लिखते हैं हैव अ ग्रेट इवनिंग। और इंदौर से अजय साखरी ने भी हमें मैसेज भेजा है, नाइस सॉन्ग। और ये एक मैसेज आया है सुरेश पुट्टजवार का और लिखते हैं बहुत बढ़िया सॉन्ग और इन्हें भी टुकुर टुकुर सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। वेल दोस्तों, कई बार हम भी आप ही लोगों के बहाने कुछ गाने बड़े टाइम के बाद सुन लेते हैं, जैसे कि ये अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लव यू जिंदगी अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ, और आज जो हमने बात कही है फेस्टिंगर्स लॉ के बारे में कि 10% हो सकता है कि हमारे बस में ना हो, लेकिन एक्चुअली में हमारे दिन का क्या, पूरे हमारे जीवन का 90% होता है हमारे ही हाथों में। और एक और बस छोटी सी कहानी जो इस वक्त मुझे याद आ रही है, और आप लोगों ने भी इस कहानी को बहुत बार शायद पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। एक गुरु और शिष्य नदी किनारे बैठे थे और अपनी साधना में लीन थे। इतने में एक व्यक्ति आया और बिना वजह बस उनके जो गुरु थे उनका अपमान करने लगा। बहुत देर तक वो उस जो गुरु थे उनको बहुत देर तक वो भला बुरा कहता ही रहा। गुरु ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुराते रहे। जब वो चला गया तो शिष्य ने बड़े आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने तो कुछ किया ही नहीं। उस व्यक्ति का कोई भी बुरा काम ना करने के बावजूद भी आपको वो व्यक्ति कितना कुछ भला बुरा सुना दिया। गुरु ने मुस्कुराकर करके अपने शिष्य से एक सवाल किया कि अगर मान लो कि कोई तुम्हारे लिए कोई उपहार लेकर आए, लेकिन वो उपहार तुम लो ही नहीं, तो वो उपहार आखिर किसके पास रहेगा? तो शिष्य ने थोड़ा सा समंजस में और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले स्टेट में थे वो, और शिष्य ने जवाब दिया कि अगर मैंने किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार लिया नहीं, तो जो व्यक्ति वो उपहार लेकर आया है वो उपहार तो

और फिर खुद से पूछिए एक सवाल कि अब जो रिएक्शन मैं देने वाला हूँ, ये रिएक्शन मेरे कल को क्या और बेहतर बनाने वाली है या फिर सिर्फ इस पल को आगे बढ़ाएगी। हो सकता है आपकी खुद की अंतरात्मा बोल दे कि अरे छोड़ो, जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हर युद्ध जीतना सफलता नहीं होती, कई बार सही युद्ध चुनना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। तो जो व्यक्ति अपने रिएक्शन पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर लेता है, वही अपनी जिंदगी की दिशा पर भी नियंत्रण कर सकता है। लव यू जिंदगी कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, 5:50 का वक्त फिलहाल इस वक्त।

0: भी खट्टी मीठी तकरार,
1: जब तुम चाहो पास आते हो,
0: कभी बे इंतहा प्यार, कभी चुलबुली सी शरारत, तो कभी मासूमियत बेशुमार।
2: ये है अनोखे रंगों वाला
0: FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर,
2: दिल से
0: दिल तक।

0: कभी खट्टी मीठी तकरार,
1: जब तुम चाहो पास आते हो,
0: कभी बेइंतहा प्यार,
2: बे इंतहा।
0: कभी चुलबुली सी शरारत,
1: बघाने बावड़े आगर, बघाने बावड़े आगर,
0: तो कभी मासूमियत बेशुमार। ये है अनोखे रंगों वाला FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, दिल से दिल तक।

तो दोस्तों आप चलते चलते आज के इस लव यू जिंदगी कार्यक्रम का मंत्र बस इतना ही कि हर बात पर प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, हर चुनौती स्वीकार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना बहादुरी नहीं होती, कई बार बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही शायद सबसे बड़ी जीत होती है। और चलते चलते गुलजार साहब की ये पंक्तियां याद आती हैं कि थोड़ा सा ठहर जाने में भी फायदा है, थोड़ा सा ठहर जाने में भी फायदा है, हर सफर दौड़कर तय नहीं होता। दोस्तों इसी खूबसूरत सोच के साथ अपना

ख्याल रखिए, लेकिन घबराइए मत। इस वक्त मैं आपको टाटा बाय बाय नहीं कह रही हूँ। बता दूँ कि ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे नागपुर केंद्र से, और मैं मिलूंगी आपसे ठीक 6:15 पर लेकर कार्यक्रम अंदाज़े बयान। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

दोस्तों नमस्कार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। शाम के ठीक 6:16 का वक्त और आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम अंदाज़े बयां। और आज की इस शाम लेकर अंदाज़े बयां की महफिल मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता। दोस्तों हर जज्बात का एक अलग रंग होता है, एक अलग ढंग होता है और होता है एक अलग अंदाज़े बयां। और आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जहां पर कई सारी बातों के कितने अलग अलग ढंग से उन्हें कहा गया, दिल की बात को भी कैसे एक अलग अंदाज़े बयां से दूसरे तक पहुंचाया गया। जब नज़रों की बात हो तो बहुत सारी शायरियां, बहुत सारे शेर आपने सुने होंगे, आपने पढ़े होंगे। साहिर लुधियानवी लिखते हैं, अब आए या ना आए इधर पूछते चलो, अब आए या ना आए इधर पूछते चलो, क्या चाहती है उनकी नज़र पूछते चलो।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडिया वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। यूं तो अगर आपको अंग्रेजी में किसी से कहना हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं तो आप शायद कहेंगे आई लव यू। लेकिन हमारे कवियों ने इसे एक बेहद ही सुंदर ढंग से अपनी इस बात को, या यूं कहें कि दिल में जो प्यार है उसे कैसे दूसरे तक पहुंचाएं, कैसे उसे ये समझाएं कि अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। सुनिए ये गीत और इस गीत के खूबसूरत शब्दों को अलग अंदाजे बयां को।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: दोस्तों 6:51 का वक्त और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम अंदाज़े बयां. और बस अब कुछ घड़ियां, उसके बाद हम समेटेंगे अंदाज़े बयां की इस महफिल को. लेकिन समेटने से पहले, आज 20 जुलाई का दिन और आज है जन्मदिन हमारे हिंदी फिल्म जगत के मशहूर कलाकार नसीरुद्दीन शाह का. और अंदाज़े बयां कार्यक्रम में हम उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं, और वो भी एक अलग अंदाज़ में. सुनते हैं उन्हीं की फ़िल्म का ये खूबसूरत सा गीत.

दोस्तों, आप लोगों की जो रिक्वेस्ट है अगले कार्यक्रम के हम तुम के लिए, वो अभी से आने लगी है। लेकिन आज हम तुम कार्यक्रम में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट बस इतना सा कि आज 20 जुलाई को है मून डे। इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और साथ ही साथ आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आज जिस भी गाने की रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाएं उसमें जिक्र हो चांद का। फिलहाल अंदाज़े बयां की इस महफिल को समेटते हैं इस खूबसूरत गज़ल के साथ।

दोस्तों ठीक 7 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और मैं मिलूंगी आपसे लेकर अपने पिटारे को साथ ठीक 7:10 पर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर, जो है म्यूजिकली योर्स। और शाम के ठीक 7:11 का वक्त, और वक्त है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम का। और आज है 20 जुलाई। दोस्तों आज की रात जरा आसमान की तरफ देखिएगा, वही चांद जो हमारे लिए बचपन में चंदा मामा बना, जिसे देखकर प्रेमियों ने खत लिखे और जिसे देखकर कवियों ने न जाने कितनी गजलें और नज़में लिख डाली। और आज मैं ये सारी बातें आखिर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज है मून डे। 20 जुलाई 1969 का दिन, वो तारीख जब इंसान ने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखा। और इसीलिए आज कार्यक्रम हम तुम में मैंने आपसे एक गुजारिश की कि आज आप जो भी जिस भी गाने की रिक्वेस्ट भेजें, बस उसमें जिक्र हो चांद का। और कार्यक्रम हम तुम में ये पहला गीत जो है मेरा भी पसंदीदा गाना, फिरोज सिकंदरपुरी और मीना के पसंद पर फिल्म जख्मी का ये गीत।

उमरिया कोला से प्रमोद चिंचोलकर और साथ ही साथ जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह ने सुनना चाहा सावन को आने दो, इस फिल्म का ये गीत यशोदास की आवाज में। दोस्तों 7:22 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तो, और आज मून डे के अवसर पर बस मैंने भी एक रिक्वेस्ट की है आपसे कि जो भी गाने, जो भी सॉन्ग आप रिक्वेस्ट करें उसमें जिक्र हो, उसमें बात हो चांद की। वैसे दोस्तों हम सबकी जिंदगी में भी एक चांद होता है ना, कोई सपना किसी के लिए, कोई अपना घर किसी के लिए, माँ बाप का मुस्कुराता हुआ चेहरा तो किसी के लिए अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य, वो चांद जिस तक हम सभी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो जो आसमां में चांद है वहां तक पहुंचने वाले वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा, उन्होंने बस इतना ही कहा कि कोशिश करते रहो, शायद हजारों बार असफल रहोगे लेकिन मिशन ना रुके, सपने की ओर बढ़ते चलो। और शायद यही मून डे हमें सिखाता है कि अगर मंजिल बहुत दूर दिखाई दे भी रही है तो क्या, बस हर दिन एक कदम अपनी मंजिल की ओर। और फिलहाल कार्यक्रम में हम भी बढ़ते हैं एक कदम आगे और सुनाती हूँ आपको दामिनी फिल्म का ये मीठा सा गीत। और किन की पसंद पर हम सुनने वाले हैं बताऊंगी आपको गीत के बाद।

दोस्तों, इस न्यूज अपडेट के पहले, इस फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपडेट्स के पहले जो गीत आप सुन रहे थे, फिल्म दामिनी से आवाज थी कुमार सानू अलका याग्निक की और पसंद भेजी थी मुंबई से प्रकाश शिंदे, साथ ही साथ रजनीकांत पाटिल ने, और इस गीत को सुनना चाहा था हितेंद्र दास ने आसाम से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत फना फिल्म का, और इस गीत को सुनना चाहा है अरविंद कुलकर्णी और विजेंद्र घटोल ने।

किशोर कुमार की आवाज में कलाकार फिल्म का ये गीत और पसंद भूषण सोनाम ने, ओमकार काटकर, राकेश माथुर वैदही और साथ ही साथ दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा की। और ये अगला गाना स्वीकार किया मैंने फिल्म से, जेबू और ज्योति घटोल की पसंद पर।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत स्वीकार किया मैंने इस फिल्म से। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम तुम, जहां आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते हैं 8657661071 यानी कि 8657661071 इस नंबर पर मैसेज करके, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके पसंद किए गाने आप तक जरूर पहुंचे। और आज यहाँ कार्यक्रम हम तुम में हम मना रहे हैं मून डे। वैसे दोस्तों चांद हमेशा से हमें एक और भी बात सिखाता आया है, बहुत से लोगों ने सीख ली और उससे भी ज्यादा लोगों ने बस यूं ही उस बात को नजरअंदाज कर दिया। बात यह है कि चांद भी हर रात पूरा नहीं होता, कभी आधा, कभी और छोटे टुकड़ों में, और कभी कभी तो बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। लेकिन क्या इसका ये मतलब होता है कि चांद खत्म हो गया? नहीं ना, वो तो बस वही होता है, बस सही समय का इंतजार करता है। और हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी ही है। अगर आज हमारी चमक थोड़ी कम है, अगर आज कुछ अधूरा लग रहा है, तो ये अधूरापन भी कभी हार न नहीं होता, क्योंकि अभी हमारी पूर्णिमा आना बाकी है।

और दोस्तों अब बस मेरे यानी कि आपकी आरजे दोस्त अमिता के जाने का भी समय हो गया है। आप सभी से लेती हूँ इजाज़त इसी वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और हमारी अगली मुलाकात तक रखिएगा अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल। छोड़े जा रही हूँ मैं आपको दो गीतों के साथ, कहो ना प्यार है और हम दिल दे चुके सनम। और इन दो गीतों के साथ पूरी होगी दीपा पालकर, अजय साकरे, विठल मुंगासे, पंकज मोहोड़, दिग्दर्शन कविता गौड़, राजेंद्र परमार की पसंद। और हमारे सभी श्रोताओं का धन्यवाद जिन्होंने आज के कार्यक्रम में हमारा साथ दिया। यूं ही साथ निभाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, जो है म्यूजिकली योर्स।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित।

0: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है। चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनोव में स्टेफान सेल मारिसिस फेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ भारत और मोल्दोवा के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रीय नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती, साहस और एक दूसरे की आजादी का सम्मान करने की भावना को भी दर्शाता है। राष्ट्रपति ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में साथ काम करने की बड़ी संभावनाएं हैं। मोल्दोवा की राजधानी किशिनोव में भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है।
3: मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है। ये हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और हमारे दोनों देशों के बीच बढ़ती मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। भारत और मोल्दोवा 3 दशकों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते आ रहे हैं। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति हमारे साझा प्रतिबद्धता के अनुरूप हमारी साझेदारी निरंतर बढ़ती रही।

0: प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। श्री गोयल ने बताया कि बैठक में व्यापार, निवेश, पर्यटन और आवाजाही के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने की संभावना के बारे में जानकारी देने को कहा। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस बारे में निर्देश देने को कहा कि क्या प्राथमिकी दर्ज होने से पहले पूरे मामले की जांच करने वाली SIT को स्थानीय पुलिस के बजाय इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर 27 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार मामले में SIT जांच के बारे में जानकारी देगी। विधि और न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा हितधारकों और आम जनता के परामर्श के लिए जारी कर दिया है। यह मसौदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करने के लिए बार काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नवनिर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स द्वितीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को किर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। श्री एंडी बर्नहम ने कहा कि हम ब्रिटेन के लिए बड़े बदलाव लाएंगे।
1: हम ब्रिटेन के लिए पिछले 40 सालों में सबसे बड़े बदलाव लाएंगे, एक नया राजनीतिक और आर्थिक मॉडल बनाएंगे। 1980 के दशक में ब्रिटेन ने कुछ गलत कदम उठाए थे, देश के बड़े हिस्सों में उद्योग खत्म हो गए और वे अब तक उससे उबर नहीं पाए हैं, इसीलिए हम राजनीति को बदलेंगे।
0: इससे पहले किर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में आज जम्मू संभाग में 4 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: तेज बारिश के कारण पुंछ और रजौरी जिले में बचाव और राहत कार्य आज प्रभावित हुआ। कल आए विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के दल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं तथा संवेदनशील इलाकों में हाई अलर्ट पर हैं। पुंछ, रजौरी, रियासी और उधमपुर के प्रमुख मार्गों को यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक राज्य में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: केंद्र शासित प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश से हुई मौतों पर मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण कई राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रमुख सड़कों और ग्रामीण संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है।
3: तेज बारिश के चलते देहरादून मसूरी मुख्य मार्ग पानी वाले बैंड के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग पर आवाजाही अगले आदेश तक पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है। आमजन से मार्ग के खुलने तक मसूरी आने जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करने का अनुरोध किया गया है। वहीं गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने चारधाम यात्रा मार्गों के बंद होने की स्थिति में तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा शुरू करने के संबंधित जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तीर्थयात्रियों से आह्वान पर ध्यान

0: न्यौता देने और प्रशासन की आधिकारिक सलाह मानने के लिए अपील की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर कल सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले दो दिन में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले दो से तीन दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जून तक लगभग 55 करोड़ 49 लाख उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में 24,162 करोड़ यूपीआई लेन देन में 314 लाख करोड़ रुपए का आदान प्रदान हुआ। यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में स्कूलों में नामांकन बढ़कर लगभग 25 करोड़ हो गया है। लोकसभा में लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्राथमिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वर्ष 2025-26 में नामांकन अनुपात वर्ष 2024-25 की तुलना में बेहतर हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर स्त्री पुरुष समानता सूचकांक 1 या उससे अधिक है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रात 9:30 फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज आयकर रिटर्न भरना, जागरूकता, सुविधा और समय से अनुपालन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सनदी लेखाकार और कर विशेषज्ञ शरद कोहली तथा बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एच एस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्दोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा से 4 और लोगों की मौत, पिछले 2 दिन में मरने वालों की संख्या 16 हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कई जिलों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कल तेज बारिश का रेड अलर्ट और ब्रिटेन में लेबर पार्टी के एंटी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। आज विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही बार बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही 7 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 6 बार स्थगित की गई। इस व्यवधान के कारण दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय न्यायालय संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। वहीं राज्यसभा में जब सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो 9 नवनिर्वाचित सदस्यों ने उच्च सदन के सदस्य के तौर पर शपथ ली। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या मानसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे अत्यंत उत्पादक सिद्ध हो सकते हैं। संसद के मानसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि महज 1 महीने में देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, जो प्रत्येक नागरिक को गौरवान्वित करती हैं। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों तथा गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने की सलाह दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि पनामा के विदेश

मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच हाल में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को और आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सरकारें और उनके नेता भारत पनामा साझेदारी को गहरा और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर एक समिति का गठन करे जो देश भर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाओं के लिए एक समान दिशा निर्देश तैयार करेगी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया कि समिति के गठन के 3 महीने के भीतर केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। और खेलों में पीवी सिंधु कल से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अजब तरह का है मौसम कि खाक उड़ती है, अजब तरह का है मौसम कि खाक उड़ती है। वो दिन भी थे कि खिले थे गुलाब आंखों में, वो दिन भी थे कि खिले थे गुलाब आंखों में। मोहब्बत का वो एक मौसम था जो दिल में ठहर सा गया था, और वो मौसम ऐसा था कि आज भी उसी मौसम का एहसास होता है। ये आंखें वही मौसम देखना चाहती हैं, लेकिन न जाने क्यों वो मौसम कभी लौटता ही नहीं है। उस मौसम को अक्सर कई शामी आवाज देती हैं, लेकिन इन शामों में और उन शामों में बड़ा ही फर्क था। लेकिन वही शाम आज भी गुनगुनाती है कि काश वो साथ हो तो क्या बात है, उसकी आवाज सुनाई दे तो क्या बात है। एक अलग ही किस्म का ये एहसास होता है

और ये आंखें भी तो उसी शाम का इंतजार करते हैं, ये हाथ भी तो उसी हाथ का सहारा चाहते हैं, ये दिल उसी एहसास के साथ आज भी जिंदा है, महसूस करता है उसको। आज भी उसकी आंखों में राज वही था, चेहरा वही था, चेहरे का लिबास वही था। कैसे उसको बेवफा कह दूं यारो, आज भी उसके देखने का अंदाज वही था, आज भी उसके देखने का अंदाज वही था।

वाकई अपनी आंखों में बसाकर क्या कहें इस दिल को। ये दिल तो न जाने क्या क्या चाहता है, ये दिल तो न जाने क्या क्या कहता है। इन आंखों में मुसलसल उसे बसाने को जी चाहता है। दरअसल इश्क एक सौगात देता है, मुसलसल उसकी जानिब से ये सौगात आती रहती है। उसका जिक्र हमेशा रहता है, उसकी बात मुसलसल होती रहती है। और फिर मोहब्बत में जनाब एक ऐसा मकाम आता है जहां अपनी ज़ात में भी सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात रहती है, और ये दिल बार बार उसी को देखना चाहता है, उसी को महसूस करना चाहता है।

0: जाएं तो फिर इस दिल का तो बस पूछिए ही मत कि ये दिल क्या महसूस करता है। और बाकी उस लम्हे के लिए लफ्ज़ मिलते ही नहीं हैं, लेकिन जब दीदार ना हो तो दिल भी रोता है और ये आंसू भी रोते हैं। कहते हैं कि जो बात कह नहीं पाते हम अल्फाज से, वो हमारे आंसू कई बार कह जाते हैं। आंसू सब कुछ बता देते हैं। महबूब अगर पास हो तो आंखों में चमक उतर आती है, और अगर यही महबूब दूर हो जाए तो आंखें खामोशी से भीगने लग जाती हैं। हर आंसू सिर्फ कर्म की निशानी नहीं होता, कुछ आंसू बेपनाह मोहब्बत के भी हुआ करते हैं जनाब। कुछ इंतज़ार के होते हैं, कुछ अधूरी मुलाकातों के होते हैं, और कुछ उसके लिए जिसे दिल ने कभी अपने से जुदा माना ही ना हो। और ऐसे में वो शख्स हमसे दूर हो जाए तो फिर सुनिए जरा
1: ये आंसू मेरे दिल।

जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। रंगे महफिल की जनाब क्या ही बात है। रंगे महफिल वो प्रोग्राम जिसमें हम दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं, और वाकई दिल की जो आवाज़ है वो बड़ी मुख्तलिफ सी आवाज़ होती है। कहते हैं कि हमने जिस जिस को भी चाहा तेरे हिजर में, वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, जमाना सिर्फ और सिर्फ तू ही था। वाकई कहा जाता है ना कि जब जब हम किसी को अपना बनाना जानते हैं या चाहते हैं, उस दौरान जितने भी लोग मिलते हैं उनसे भी हमें मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बात उनसे ही सुनने को मिल जाती है। लेकिन ये हकीकत है कि वो लोग आते जाते मौसम होते हैं, और ज़माना ज़माना तो बस वही था, वही है, और फिर वही रहेगा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। रंगे महफिल में कई बार आपने महसूस किया होगा कि हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम बात इश्क की करते हैं। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि आज हम सब इस जज्बे से न जाने क्यों दूर होते जा रहे हैं। वैसे यही जज्बा हमें इंसान बनाता है, यही जज्बा हमें बेहतर जिंदगी जीने की एक अलग किस्म की तर्ज देता है। लिहाजा हमारी कोशिश यही रहती है कि हम याद कर सकें कुछ अपनों को, आवाज़ दे सकें इस दिल को। और इस दिल की जब बात है तो इस दिल का क्या कीजिएगा, ये दिल

कई बार बेहद खुशी का एहसास करता है, अपने जज्बात आया भी कर देता है, लेकिन कई बार ये दिल चाहते हुए भी जबान पर दर्द नहीं लाता। इन आंखों से भी एहसास नहीं हो सकता कई बार कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। शायद कहते हैं कि कुछ लोग छलकाया नहीं करते, और वाकई ये अच्छी बात है कि ये दर्द, ये चुभन, ये एहसास हम अपने दिल में ही रखें।

वाकई न जाने ऐसे कितने दर्द होते हैं जिन्हें हम बयां कर ही नहीं पाते। और फिर ये गज़लें, ये नगमे हमारे जज्बात की तर्जुमानी बन जाती हैं। और हमारे तर्जुमान जनाब आप सब भी हैं, हमारे दिल की बात भी आप कहते हैं, अपने दिल के जो दास्तान हैं वो भी बयां करते हैं। किसी ने हमें सिर्फ इतना लिखकर भेजा है, वाह, लेकिन क्या लिखा है कुछ नहीं पता इसके आगे। और हम भी आपको सुन रहे हैं कस्बा गुनौरी, यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरीन, फरहान, फारिया और ताहिरा, शुक्रिया जनाब हमारा साथ देने के लिए। और ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैक्स, सरकती जाए या आंसू मेरे दिल की जुबान। कॉन्ग्रेट्स अरुण कुमार रावत लिखते हैं गोरखपुर यूपी से, बहुत शुक्रिया अरुण जी, और अच्छा लगा आपने एक अच्छा मैसेज हमें किया और प्रोग्राम को आपने दिल से सुना। नमस्कार मैम, शुरुआत खूब सुंदर है गज़ल प्रोग्राम की और ब्यूटीफुल बातें हैं आपकी, प्लीज़ कन्वे माय मैसेज टू आकाश। और यकीनन ये तुम्बा हमारे साथ हैं और आकाश को याद कर रही हैं हमेशा की तरह। और हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आकाश आप जहाँ भी हैं उनसे मुलाकात कीजिए और अच्छी बातें कीजिए। और सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और लिखते हैं कि मधुर वाणी, मोहक प्रस्तुति और मनभावन गजल्स, मनपसंद मस्त कार्यक्रम। चलिए आपको अच्छा लगा और हमें क्या चाहिए इसके अलावा, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। चलिए तो आपको भी गुड नाइट और गुड इवनिंग। और हमारे साथ और कौन है, नमस्कार आदाब। इश्क और मुश्क छुपाए से नहीं छुपता, पुरानी कहावत है जिसे मैं सही मानता हूँ। कहने को कहते हैं कि सीने में छुपा लेते हैं। कर्नल केपी तोमर साहब हैं मेरठ से हमारे साथ। बिल्कुल आपने सही कहा कि इश्क और मुश्क कभी भी छुपाए नहीं छुपता। ना खुशबू को आप छुपा सकते हैं और ना ही मोहब्बत को आप छुपा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात कर्नल साहब दर्द की है तो दर्द कई बार छुपा लेने में ही गनीमत होता है, क्योंकि ये दर्द आप किस किस को सुनाएंगे, किस किस को बयां करेंगे, लिहाजा अपने दिल में रखिए, है ना। और अगर कोई याद आ जाए तो फिर आप क्या कहेंगे, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, कर रहा था गमे जहाँ का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए।

वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था, वो मेरे जब्त का अंदाजा करने आया था। मैं हंस के जख्म ना खाता तो और क्या करता, मैं हंस के जख्म ना खाता तो और क्या करता।

और बस अब तो इतना ही कहेंगी कि शब की तन्हाई में अब तो, शब की तन्हाई में अब तो अक्सर गुफ्तगू तुझसे रहा करती है। तो ये गुफ्तगू का दौर ऐसे ही दोस्तों चलता रहेगा और थोड़ा सा वक्त और है। बता दूं आपको कि कर्नल केपी तोमर साहब हमारे साथ हैं, शुक्रिया कह रहे हैं और आपको अच्छा लगा और यकीन मानिए हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सब इतना दिल से प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। और गीत वो जब याद आए बहुत ही पसंद आया, कस्बा गुन्नौर यूपी से हमारे साथ हैं फारूक अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। वो जब याद आए रियली दिल से दिल तक असर कर रही है आपकी बातें, गॉड ब्लेस यू। अरुण कुमार रावत गोरखपुर से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। यकीन मानिए आपकी बातें और आपका अंदाज़, आपकी मोहब्बतें हम सब समेट कर अपने साथ ले जाते हैं और अक्सर आप सबको याद करते हैं। तो बस अब इतना ही कहूंगी आप सब से कि जो मोहब्बत है इसे हमेशा हवा देते रहिएगा, यानी अपने दिल में मोहब्बत का दिया हमेशा ऐसे ही रोशन रखिएगा, क्योंकि इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत है तो समझ लीजिए कि आप इस दुनिया पर राज कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं है आपके पास तो समझ लीजिए कि कोई कुछ भी नहीं है। तो इसी जज्बे के साथ मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि चलती हूँ, बहुत जल्द आपसे मुलाकात हो गई, तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब बख़ैर।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और मोल्डोवा के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग तथा तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में सहयोग का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमा सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया है कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। झारखंड में चतरा पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के नक्सली नरेश गंजू को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर विशेष घेराबंदी कर यह कार्रवाई की गई। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ दीपिका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 12:03 और 5 सेकंड हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो लेकर हूँ हाजिर मैं एस एम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हो गए हैं, जिस पर आज अंतिम मतदान होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास के लिए स्माइल योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने और स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमा सीमा पर स्थित पांग साऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। 1:03 और 40 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांग साउ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बाद बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हूती सैन्य प्रवक्ता यहा सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: 2:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाए रखने की अपील की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य

ने तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा हाट हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हुती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि यह कदम यमन पर लगाए गए प्रतिबंध और हाल में सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले के जवाब में उठाया गया है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: कमल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों को लेकर बार बार बाधित हुई। कल नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में के हिंसा में बदलने से 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। घायलों में विशेष पुलिस आयुक्त, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त पद के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पांगसाऊ दर्रे का सीमा हाट 6 साल बंद रहने के बाद कल फिर से खुल गया। अधिकारियों

ने बताया कि सीमा हाट हर महीने 10, 20 और 30 तारीख को खुलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO ने भारत की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक 21 और 23 जुलाई को आयोजित की है। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू करने पर सहमत हुए। भारत ने यूक्रेन के बंदरगाह पर मालवाहक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारेगामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: ऐसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।